आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर, एफएम पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के सावन माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं के समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश के संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित

0: कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग भी मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज का विचार में सुनिए अहिंसा पर महात्मा गांधी के विचार। वाचक स्वर श्री अरविंद गोस्वामी का है।
3: अहिंसा परम श्रेष्ठ मानव धर्म है और पशुबल से वो अनंत गुना महान और उच्च है। अहिंसा प्रचंड शस्त्र है, इसमें परम पुरुषार्थ है। ये भीरु से भी दूर दूर भागती है। ये वीर पुरुष की शोभा है, उसका सर्वस्व है। ये शुष्क नीरस जड़ पदार्थ नहीं है, ये चेतनामय है। ये आत्मा का विशेष गुण है, इसलिए इसका वर्णन परम धर्म के रूप में किया जाता है। अहिंसा बेवकूफ़ों के लिए नहीं है, हमें बुद्धि योग से काम लेना होगा। अहिंसा ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ज्ञान को भी स्थान है और कार्यशक्ति को भी, यानी बुद्धि को भी स्थान है और हमारी सारी इंद्रियों को भी। आज तो इन सब का उपयोग अहिंसा को मिटाने के लिए हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि ये सब उसकी दासियां बनकर रहें। हम अपनी इंद्रियों को अहिंसा की दासी बनाएंगे, तब वे तेजस्विनी होंगी। अगर इस क्षेत्र में अहिंसा काम नहीं देगी तो और कहां देगी। मैं डर कर किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं किसी क्षेत्र को छोड़ देता हूं कि वहां अहिंसा काम नहीं आएगी, तो फिर अहिंसा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इसमें मनुष्य सिर्फ अपना अर्पण करता चला जाता है और ये अपना पुरस्कार आप है। निष्काम भाव से की गई ऐसी सेवा केवल मित्रों के लिए ही नहीं होती, बल्कि शत्रुओं के लिए भी होती है। अहिंसा की ये अनिवार्य शिक्षा है। अहिंसा में भय की गुंजाइश ही नहीं। भयमुक्त होने के लिए अहिंसा के उपासक को उच्च कोटि की त्याग वृत्ति की साधना करनी पड़ती है। जमीन और धन संपत्ति ही नहीं, प्राण तक से हाथ धोने पड़े तो भी घबराना नहीं चाहिए। सच तो ये है कि जिसने सब तरह से भय से मुक्ति पा न ली हो, वो अहिंसा का पूरी तरह पालन कर ही नहीं सकता। इसलिए अहिंसा के पुजारी को तो हर तरह के भय से मुक्त होकर एकमात्र ईश्वर से ही डरना चाहिए। जिस प्रकार हिंसा का सैनिक शास्त्र के नाम से ज्ञात अपना एक अलग शास्त्र है, जिसमें संहार के ऐसे ऐसे तरीके तथा साधन ढूंढे गए हैं जिनके बारे में पहले कभी किसी ने सुना भी नहीं था, उसी प्रकार अहिंसा का भी एक शास्त्र और

0: कला है। राजनीतिक क्षेत्र में अहिंसा एक नया शस्त्र है जिसका अभी विकास हो रहा है। उसमें निहित व्यापक संभावना का अभी अनुसंधान नहीं हो पाया है। अनेक क्षेत्रों में और बड़े पैमाने पर जब अहिंसा का प्रयोग होने लगेगा तब इस विषय में अन्वेषण भी हो सकेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वत्र न्यायपूर्ण व्यवहार अहिंसा की पहली शर्त है। मानव स्वभाव से ऐसी अपेक्षा शायद बहुत अधिक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मनुष्य कितना ऊंचा उठ सकता है और नीचा गिरे तो कितनी निम्नता तक जा सकता है, इस बारे में मानव स्वभाव की दृष्टि से सिद्धांत नहीं बांधा जा सकता। जो व्यक्ति और राष्ट्र अहिंसा का अवलंबन करना चाहें उन्हें आत्मसम्मान को छोड़कर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए वो दूसरे देशों पर आधिपत्य रखने अर्थात आधुनिक साम्राज्यवाद से, जो कि अपनी रक्षा के लिए पशु बल पर निर्भर रहता है, बिल्कुल मेल नहीं खा सकता। जो हमें प्रेम करते हैं उन्हीं से प्रेम करना अहिंसा नहीं है। जो हमसे नफरत और द्वेष करते हों उनसे भी प्रेम करना ही वस्तुतः अहिंसा है। प्रेम के इस महत नियम का पालन करना कितना कठिन है ये मैं जानता हूँ, लेकिन क्या सभी महान और अच्छी बातों पर अमल करना कठिन नहीं होता? द्वेष करने वालों से प्रेम करना सबसे कठिन बात है, परंतु अगर हम करना चाहें तो कठिन से कठिन बात भी ईश्वर की कृपा से आसान हो जाती है। तुम अहिंसा के उपासक हो और विवेक अहिंसा का अविभाज्य अंग है, क्योंकि अविवेक दुखदायक है और विवेक सुखदायक नहीं होता। मन वचन और शरीर से किसी जीव को दुख न देना, अपना या दूसरे का भला मानकर भी किसी जीव को दुख न देना अहिंसा है। सचमुच अहिंसा की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि हिंसा करने की गंभीर उत्तेजना होने पर भी व्यक्ति अपने विचार वचन और कर्म में अहिंसापूर्ण बना रहे। सज्जन और विनम्र लोगों के प्रति अहिंसक बने रहना कोई बड़ी बात नहीं। अहिंसा तो विश्व की प्राचीनतम शक्ति है।
1: अभी आप सुन रहे थे अहिंसा पर महात्मा गांधी के विचार, वाचक स्वर श्री अरविंद गोस्वामी का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। एपिसोड नंबर है 110। आज आप सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 306 की पहली चौपाई से दोहा संख्या 307 की अंतिम चौपाई तक। गायक स्वर सुरेश वाडेकर का है।
1: एपिसोड नंबर 110 110।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर

इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंदमग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार थे श्री सतीश भाटिया। आज आपने एपिसोड नंबर 110 सुना। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। 7 बजे सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। आठ बजकर 30 मिनट पर सौरभ कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राजस्थानी कविता पाठ। कवि होंगे श्री नरेंद्र नारायण किराड़ू। नौ बजकर 30 मिनट पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। फिल्म संगीत का समय रहेगा सवेरे 10 बजे।

दिन में 1:05 पर बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी महिला जगत। चर्चा के विषय रहेंगे हिंदी भाषा देश की शान है, मैथिली शरण गुप्त, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुण्यतिथि, बच्चों को जमीन से जुड़ना सिखाएं, संस्कारवान बनाएं। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों के लिए ज्ञान की रोशनी। वार्ताकार होंगी श्रीमती मंजू यादव। साथ ही आप सुनेंगे रसोई की कुछ बातें, ब्यूटी टिप्स और गीत संगीत।

संध्या 5:05 पर युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण होगा। आज की बात का विषय रहेगा, युवाओं के लिए वित्तीय साक्षरता है आवश्यक। लघु जानकारी सुनेंगे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुण्यतिथि के बारे में, अनुशासन से सफलता के बारे में, जैसलमेर का किला और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे रोजगार की बातें और गीत संगीत।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का समय रहेगा संध्या 7 बजे। चर्चा के विषय रहेंगे खरीफ में बाजरे की लाभकारी खेती, वर्षा जल संचय, भूमि रिचार्ज, पौधारोपण, प्रधानमंत्री फसल योजना, पशुओं को आफरा रोग से बचाएं। साथ ही इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता छत पर सब्जियों की जैविक खेती। वार्ताकार होंगे श्री सूरज प्रकाश। प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा की, कार्यक्रम संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। साथ ही आप सुनेंगे मौसम संबंधी जानकारी और लोकगीत। रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रेडियो रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रात को 10 बजे प्रसारित होगा।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। एफएम पर आप हमें 101.6 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज आप जानकारी सुनेंगे पशु पोषण में खनिज लवण का महत्व विषय पर। जानकारी दे रहे हैं श्री अश्वनी व्यास।
1: किसान भाई राम राम। आज बात कर सा पशुओं रे पोषण रे मायने खनिज लवण रो कई महत्व है। अपा पशुओं ने पेट भरण वास्ते चारों भी दिया करा हाँ, पानी भी पाया करा हाँ, और भी दूसरी औषधियाँ चारे रे सागे मिला दिया करा हाँ। लेकिन ये सागे सागे आपने और भी समझना जरूरी है कि पशुओं रे भोजन में खनिज लवण बहुत बड़ा उपयोग है। अगर कोई भी चीज ने आपा जलार और बीरी राख बना ला तो बाज की राख या भस्म है बिना ही आपा खनिज कह सका। बहुत थोड़ी मात्रा में हरेक प्रकार रे चारे और दाने सु शरीर ने प्राय खनिज लवण मिल जाया करे। प्राकृतिक रूप से भी पशुओं रे शरीर में कई उपयोगी खनिज लवण पाया जावे है, लेकिन कुछ खनिज लवण पशुओं ने आहार रे सागे भी देने की जरूरत होवे जिके सु पशु निरोगी रह सके और पशु रे शरीर में ताकत आ सके। भी खनिजा रे मायने कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम और क्लोरीन जैसा तत्व शामिल है। दूसरा जो का खनिज लवण है यानी शरीर ने बहुत थोड़ी जरूरत होवे वे विरल खनिज भी आप कह सका जिया लोहो, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज, मोलिब्डेन, वेमियन, लोरीन, सेलेनियम, निकल, सिलिकॉन, टिन। ये कई ऐसा खनिज लवण है जिकानी शरीर ने बहुत ही थोड़ी आवश्यकता होवे। लेकिन कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, लोहो, तांबो, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन अति आवश्यक खनिज लवण है जिका पशु रे स्वास्थ्य की रक्षा करने वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी है। खनिज लवण सामान्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस जिका है वे दांत और हड्डियां वास्ते जरूरी होवे। दुधारू पशुओं में रक्त में कैल्शियम री कमी से दूध ज्वर रोग हो जावे। सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन शरीर मायने जिका द्रव्य पदार्थ है बियारो परिसारक दबाव ठीक बनाए रखे जिके सु शरीर मायने संतुलन स्थापित रहे। खून मायने पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम री सही मात्रा अगर होवे तो पशु रे हृदय री गति और मांसपेशियां में जिक

0: ये उत्तेजना है और संकुचन रिज की प्रक्रिया है वह चोखी बनी रहे। लोह तत्व लाल रक्त कणा में हीमोग्लोबिन बनाने वास्ते बहुत आवश्यक होवे, जिके सु शरीर मायने रक्त में जिकी ऑक्सीजन की मात्रा है वह बनी रहे और पूरे शरीर में पूर्ण ऑक्सीजन मिल पावे। इधर सागे सागे खनिज लवण जिका है वह शरीर कई भागा रे मायने एंजाइम पद्धति ने आवश्यक बनाने वास्ते भी जरूरी है। प्रजनन क्षमता री अगर आप बात करा तो खनिज लवण इमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभावे। मुख्य रूप से कैल्शियम, फॉस्फोरस, तांबो, लोहो, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयोडीन और जिंक ए कई ऐसा पदार्थ है जिकानी कमी से पशुओं में मदहीनता आ सके या बार बार मद आने री और गर्भधारण न करने री समस्या भी पैदा हो सके। आहार में कैल्शियम री कमी के कारण अंडा निषेचन जिको है वो काम कठिन हो जावे और गर्भाशय पीलो और शिथिल हो जावे। पशुओं रे आहार में फॉस्फोरस री कमी से पशुओं में अंडोत्सर्ग कम हो जावे और पशुओं में गर्भपात होने की संभावना भी बढ़ोड़ी रहे। दूसरा जिका खनिज लवण है वह पशुओं में अंडोत्पादन, शोणोत्पादन, निषेचन, भ्रूण रो विकास, बच्चे रो पैदा होने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभावे। मुर्गियों में अंडा उत्पादन के वास्ते कैल्शियम सहित अन्य खनिज तत्व बहुत आवश्यक होवे। चारे रे मायने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और विटामिन की क्षमता बढ़ावन वास्ते आपने चारे रे मायने खनिज लवण अलग अलग रूपा में देता रहना चाहिए। पशुओं के आहार में सूखे चारे रे सागे सागे हरे चारे रो होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हरो चारो जिको है बेरे मायने सूखे चारे की तुलना में पोषण तत्व ज़्यादा होवे। जठे तक दाणो देने की बात है, कोई एक प्रकार रो दाणो या खड़ी नहीं दे परो और अलग अलग या मिक्स दाणो और खड़ी पशुओं ने देनी चाहिए। एक क्विंटल दाणो तैयार करने वास्ते 20-30 किलोग्राम खड़ी, 30-50 किलोग्राम चोकर, 15-24 किलोग्राम दलहनी फसलों रो उत्पादन, फिर अदलहनी फसलों रो उत्पादन भी अपने में डाल सका उत्पाद, 2 किलोग्राम खड़िया, 1 किलोग्राम नमक याने लेर चोखी तरह मिलार और ओ पशु आहार अगर आप पशु ने देवा तो पशुओं के मायने खनिज लवण की जिकी कमी है मेरी पूर्ति हो जावे।
1: पशु पोषण में खनिज लवण का महत्व, ये जानकारी दे रहे थे अश्वनी व्यास। कार्यक्रम था खेती की बातें, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आइए सुनते हैं लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार होंगे।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कविता वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने काम, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति हम लापरवाह हो गए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना जरूरी है। कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब कुछ उसके बाद आया। श्रोताओं, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को, अपने शरीर को मजबूत बनाएं, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम। जी हां श्रोताओं, व्यायाम को अपने जीवन के लिए हम अनिवार्य बनाएं। श्रोताओं, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, यदि बीमारी के लिए समय निकालना नहीं चाहते तो स्वास्थ्य के लिए समय निकालना होगा। रोजाना 30 मिनट का व्यायाम हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। सुबह की सैर, तेज कदमों से चलना, योग करना, प्राणायाम करना, साइकिल चलाना, तैराकी, हल्का फुल्का व्यायाम, जी हाँ श्रोताओं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरती है। व्यायाम से रक्त संचार बेहतर होता है, हृदय स्वस्थ रहता है, डायबिटीज, बीपी ऐसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है, साथ ही हड्डियां मजबूत बनती है, और हाँ, मानसिक तनाव काफी हद तक दूर होता है। श्रोताओं, जब इतने सारे फायदे हैं, हमारी सोच सकारात्मक बनती है, कार्य की क्षमता बढ़ती है और जीवन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। श्रोताओं, आवश्यकता इस बात की है, एक छोटा सा संकल्प लें कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, हम प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालेंगे। जी हाँ श्रोताओं, सिर्फ बातें करने से कुछ होगा नहीं, आवश्यकता है कि हम स्वयं इस ओर सचेत रहें, प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालें, योग करें, व्यायाम करें और अपने जीवन को स्वस्थ

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें। जब

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे अपने लिए समय निकालने की। अगर हम कहें कि समय संसार का सबसे मूल्यवान धन है, धन खोकर वापस पाया जा सकता है लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि आज का हमारा समय का जो प्रबंधन है वो सबसे सर्वोपरि है। हम सभी को दिन में समान 24 घंटे मिलते हैं और यही 24 घंटे किसी को सफल बनाते हैं तो किसी को असफल। बस इतना अंतर है कि कोई समय का सदुपयोग करता है तो कोई उसे यूं ही व्यर्थ गवा देता है। श्रोताओं, समय प्रबंधन का अर्थ केवल घड़ी देखकर काम करना नहीं है बल्कि अपने कार्य को सही प्राथमिकता देना है। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टालना सबसे बड़ा समय का अपव्यय है। श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है और अनावश्यक मनोरंजन है जो हमारे सबसे बड़े चोर बन गए हैं। ये हमारे प्रतिदिन के कितने घंटे हमसे चुरा ले जाते हैं। श्रोताओं, सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? वो समय को अपना मित्र बना लेते हैं। वो दिन की शुरुआत योजना के साथ करते हैं, आवश्यक कार्य पहले करते हैं और हर पल का सदुपयोग करते हैं। चाहे विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो या फिर कोई व्यवसायी हो, हर किसी के लिए समय का प्रबंधन सफलता की पहली सीढ़ी है। समय का सही उपयोग अगर हम नहीं करते तो हम तनावग्रस्त रहते हैं और यही हम समय को व्यवस्थित करते हैं तो जीवन को संतुलित बना सकते हैं। श्रोताओं, प्रतिदिन कुछ मिनट अपनी योजनाएं बनाने में लगें। समय पर उठें, समय पर सही कार्य करें, समय पर विश्राम करें तो जीवन अधिक सरल बनेगा, सफल बनेगा और सुखद बनेगा। क्योंकि जब हम समय का सम्मान करते हैं ना तो समय हमें सम्मान दिलाता है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि समय को व्यर्थ न जाने दें। हर दिन कुछ लक्ष्य तय करें और प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करें क्योंकि यही हमें सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। क्योंकि समय तो समय है, श्रोताओं, कब बदल जाता है पता नहीं चलता।

0: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: श्रोताओं, आज हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई का, जिनकी पुण्यतिथि हर वर्ष 5 अगस्त को मनाई जाती है। श्रोताओं, वो कुल एक राजनेता नहीं बल्कि दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे। असम और पूर्वोत्तर भारत की पहचान और भारत की एकता को सुरक्षित रखने में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रोताओं, वो भारत रत्न से भी सम्मानित रहे। किसी भी महान व्यक्ति की पहचान श्रोताओं उसके पद से नहीं बल्कि उसके सिद्धांतों से और उसके कर्मों से होती है। गोपीनाथ जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, कई बार जेल गए। आजादी के बाद असम के विकास, उसकी शिक्षा और जन कल्याण को एक नई दिशा दी। राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को उन्होंने सदा सर्वोपरि रखा। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता रही कि वो सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के प्रति समर्पित थे, इसीलिए जनता उन्हें प्रेम पूर्वक लोकप्रिय की उपाधि देती थी। श्रोताओं, इतिहास उन लोगों को कभी नहीं भूलता जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को चुनते हैं। गोपीनाथ जी ने विभाजन के कठिन दौर में असम के हितों की रक्षा की और भारत की अखंडता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निर्णयों पर आज भी भारत के विकास और वहां की पहचान दिखाई देती है। श्रोताओं, उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति के हित के बारे में सोचता है। सत्ता उनके लिए कभी लक्ष्य नहीं रही बल्कि सेवा का माध्यम रही। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें ये संकल्प जरूर लेना चाहिए कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, समाज के सद्भाव बनाए रखें और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है, गले बांध लो अपने सर से।

श्रोताओं, जीवन को सही तरीके से जीने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, सोच को सकारात्मक रखें, समय का सही सदुपयोग करें और हाँ, वर्तमान में जीना जरूरी है। श्रोताओं, छोटी छोटी सकारात्मक आदतें और आभार व्यक्त करने की भावना जीवन को सरल बनाती है, खुशहाल बनाती है। अपने भोजन को पौष्टिक रखें, शुद्ध पानी का सेवन करें, नियमित रूप से योग करें, व्यायाम करें, सैर करें और पूरी गहरी नींद लें। मानसिक शांति और सकारात्मकता को बनाए रखें, वर्तमान में जिएं, छोटी छोटी बातों पर पछतावा न करें और हर परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक रखें। श्रोताओं, अपने दिन की शुरुआत एक संतुलित दिनचर्या के साथ करें, समय का सही प्रबंधन करें, जरूरी कामों को प्राथमिकता दें और हाँ, दूसरों के लिए सदा दयालु बने रहें, मददगार बने रहें, तो श्रोताओं, निश्चित रूप से आपको मानसिक शांति मिलेगी। और अगर आप मानसिक रूप से शांत हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतर है। तो श्रोताओं, ये था आज के सुप्रभात का अंक। आज्ञा दीजिए कविता वर्मा को। नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। एफएम पर आप हमें 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। सवेरे के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, स्वर जसपाल सिंह और साथियों के हैं और फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है हमसे मिले तुम। गायक स्वर आशा भोसले, सब्बीर कुमार और साथियों के हैं।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे थे। फिल्म संगीत अब हमारी इसी सभा में सवेरे 10 बजे सुनेंगे।

मीडियम वेव 215.05 मीटर पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। एफएम पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
4: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू

0: कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
2: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बन गए 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग CID की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड के

0: राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन स्थल पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
3: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा कर रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरल में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी। हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के 2-2 खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार

0: लेकर सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इंडिया फ्लैगशिप सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, ऑल 13 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड। इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कमर्शियल वेसल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अनाउंस इट्स बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू दिस मॉर्निंग। Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noor-e Aulia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who were on board the vessel, were rescued safely. We have a report.
3: According to reports, the Indian flag tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said that the vessel was hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink. Mr. Sonowal said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. Moreover, in a statement, Ministry of External Affairs, MEA, condemned the attack on the Indian flagged vessel, saying the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. It said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The ministry said that the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities for the safety and security of the crew. With Anupam Mishra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide the reality. Briefing media in New Delhi External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He said that since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. He said the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression and now seeks to manufacture legitimacy through a hollow electoral exercise.
4: This so-called local election in Pakistan-occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. Such hollow exercises.

0: operating procedure on cyber fraud accounts. Qatar and US see progress in talks to end Iran war, while in the Sun Times reports 13 Indians rescued as vessel sinks after attack off coast of Yemen. A headline in the Tribune writes about sex ratio at birth falling to 900 in first half of current year. The paper adds Karnal tops with 945, Charkhi Dadri lowest at 829. Strongly criticizing Pakistan over its recently conducted so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the statesman writes, India dismisses POJK polls as complete farce. All the dailies have covered the news of passing away of educationist, philanthropist and ex-governor of Tripura, Bihar and West Bengal, Padma Shri Dr. D.Y. Patil at the age of 90. And finally, Gen Z may help drive digital gold rush, states the Economic Times, as the savvy Gen Z emerges as the fastest growing consumer. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India flagship sinks after attack in Red Sea, all 13 Indian sailors rescued. India condemns attack on commercial vessel. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:30 हुए हैं। सौरभ कार्यक्रम में सुनिए राजस्थानी कविता पाठ। कवि हैं श्री नगेंद्र नारायण किराड़ू।
3: मारी पहली कविता रो नाम है गिरगिट। गिरगिट सु मैं करी बातड़ली, मैं बिना पूछो देखियो है मैं तने एक रंगो दुरंगो रंग बिरंगो कई बात है। गिरगिट सु मैं करी बातड़ली, मैं बिना पूछो देखियो है मैं तने एक रंगो दुरंगो रंग बिरंगो काई बात है। तद वो बोलियो अबे मैं छोड़ दीनो है रंग बदलनो, रंग बदलनो, बदल रहा है रंग स्वार्थी लोग, बदल रहा है रंग स्वार्थी लोग, पल पल माए छिन छिन माए घड़ी घड़ी माए, तन बदले मन बदले ढंग बदले रंग बदले, बदल रहा है स्वार्थी लोग, पल पल माए छिन छिन माए घड़ी घड़ी माए, मन बदले तन बदले ढंग बदले रंग बदले, और निष्कर नाक ने कहो फिरूं गिरगिट। मैंने रंग रो रंज नी है, मने रंग रो रंज नी है, रंज है इन बात रो कि बात बात में बदलता रंग बड़बोला मिनख, नाम तो फिर भी मारू लगावे कि बात बात में बदलता रंग बड़बोला मिनख, नाम तो फिर मारो ही लगावे के देखो इनमें आ ओ बात बात में गिरगिट दाई रंग बदले, और सुनने एड़ी बाता मारो जीव बड़े, और सुनने एड़ी बाता मारो जीव बड़े, मारो जीव बड़े, उन्हें उन्हें रंग में मारो रंग नहीं रड़े, उन्हें रंग में मारो रंग नहीं रड़े। मारी दूजी कविता है बादली। बादली मने थारी आस सुनने थमजा मारे ऊपर भरदे पोखर गागर कुपल, बादली माने थारी आस सुन ले थमजा मारे ऊपर भरदे पोखर गागर कुपल, देख तने टाबरिया भाजे, देख तने टाबरिया भाजे तू तो खाली कोरी गाजे, देख तने टाबरिया भाजे तू तो कोरी खाली गाजे, दो चार बूंदा सू मारी नहीं मिटेला प्यास, बादली माने थारी आस दो चार बूंदा सू मारी नहीं मिटेला प्यास, बादली माने थारी आस, टप टप टप टप टपका टपके छप छप छप छप टाबर लपके, टप टप टप टप टपका टपके छप छप छप छप करता टाबक लप टाबर लपके, बरस झमाझम अबके अबके खेता खड़ी बाजरी उड़ी के, बरस झमाझम अबके अबके खेता खड़ी बाजरी अड़ी के, टीटी टिहू टिटोड़ी टहू के टीटी टिहू टिटोड़ी टहू के, चिड़ा चिड़िया ने धूड़ नहावनो आवे मोकली रास, बादली महने थारी आस चिड़ा चिड़ा ने धूड़ नहावनो आवे मोकली रास, बादली महने थारी आस, कर दे सगड़ा गाभा गीला भर दे सगड़ा डाबर झीला, कर दे सगड़ा गाभा गीला भर दे सगड़ा

डाबर झीला टाबर रमसी गीली रेत में यो हरक्षी गांव खेत में मन सरसासी हेत हेत में मन सरसासी हेत हेत में मिनख पखेरू जीव जंतुआ सगलारी तू ही है खास बादली मने तो थारी आस मिनख पखेरू जीव जंतुआ सगलारी तू ही है खास बादली मने तो थारी आस मोर पपैया तितर बटेर रोज लगावे थारी ही टेर मोर पपैया तितर बटेर रोज लगावे थारी ही टेर बिन बरसानी किणरी खैर बिन बरसानी किणीरी खैर बादली बरस मत कर देर बादली बरस मत कर देर काचर बोर मतीरा निपजा इमराती पानी ने देर कास्तर बोर मतीरा निपजा इमराती पानी ने देर बिरखा बरसे चारू मेर फसने हो जाए घेर घुमेर मिटा दे तू धरती री प्यास मिटा दे तू धरती री प्यास बादली मने तो थारी आस बादली मने तो थारी आस। मारी तीजी कविता है थारे माथे ही लिखूंला मैं थारे माथे ही लिखूंला मैं जिको भी कैसू थारे माथे ही कहूँला मैं जिको भी लिखसूँ थारे बारे में लिखूंला मैं थारे माथे ही लिखूंला मैं जिको भी कैसू थारे माथे ही कहूँला मैं जिको भी लिखसूँ थारे बारे में लिखूंला क्योंकि थारे ऊपर कहणो लिखणो मिटणो सिमटणो झिझकणो झिड़कणो क्योंकि

बरखा बरसे चारु मेर, फसने हो जाए घेर घुमेर, मिटा दे तू धरती री प्यास, मिटा दे तू धरती री प्यास, बादली मने तो थारी आस, बादली मने तो थारी आस। मारी तीजी कविता है थारे माथे ही लिखूंला, मैं थारे माथे ही लिखूंला, मैं जिको भी कहसूँ थारे माथे ही कहूँला, मैं जिको भी लिखसूँ थारे बारे में लिखूँला, मैं थारे माथे ही लिखूँला, मैं जिको भी कहसूँ थारे माथे ही कहूँला, मैं जिको भी लिखसूँ थारे बारे में लिखूँला, क्योंकि थारे ऊपर कहणो लिखणो मिटणो सिमटणो झिझकणो झिड़कणो, क्योंकि थारे ऊपर कहणो लिखणो मिटणो सिमटणो झिझकणो झिड़कणो सगळो ही आपणो सो लागे, सुखरो सपणो सो लागे, लागे है के थारे माथे ही खत्म कर दूँ, लागे है के थारे माथे ही खत्म कर दूँ अणगिणत सांसियाँ, एक टक तने ही देखूँ अड़चण लूँ थारा सगड़ा आँसू, थारे माथे ही खत्म कर दूँ अणगिणत सांसियाँ, एक टक तने ही देखूँ और चुन लूँ थारा सगड़ा आँसू। मारी चौथी कविता है ई जीबड़ली ने बस में कर लो। जीबड़ली आ जुलम करावे, बत्ती शाम में रहवे पर तीस मार की आ बन जावे, जीबड़ली आ जुलम करावे, बत्ती शाम में रहवे पर आ तीस मार की बन जावे, बोल बडोड़ा बोलो चोखा, बोल बडोड़ा बोलो चोखा, पण जनता नी खावेली धोखा, जद आ बोले आड़ पताल ठोलो खावे सुओ कपाड़, जद आ बोले आड़ पताल ठोलो खावे सुओ कपाड़, जीबड़ली तो लपलप कर जावे घर भर में आफत कर जावे, जीबड़ली तो लपलप कर जावे घर भर में आफत कर जावे, लपलप करने लाय लगावे, जीबड़ली या जुलम करावे, जीबड़ली या जुलम करावे, आँख्या में भर आवे आंसू पण है कुण सासूरी सासू, आँख्या में भर आवे आंसू पण है कुण सासूरी सासू, घणी हेकड़ी नहीं चलेला धूड़ मांजने में धर देला, पदरे मद में रहो मन्ना, पदरे मद में रहो मन्ना, मिनख पड़ेरो छोड़ो सतना, मिनख पड़ेरो छोड़ो सतना, गले लगाओ मत आफतना, जीबड़लू क्यों राखो पतना, जीबड़ली क्यों राखे पतना, शेर री हांडी में सवा शेर अब नहीं समावे, शेरी हांडी में सवा शेर अब नहीं समावे, पावली पांचा में चावे अब नहीं चाल पावे, बदल तो जमानो चौकी सीख सिखावे, जखम लगावे बापर लूणा भी बुरकावे, जखम लगावे बापर लूण भी बुरकावे, भगत री चाल ने टाड़ो ना, भगत री चाल ने टाड़ो ना, झगड़ा टंटा पाड़ो ना, जीबड़नी ने लेवो संभाल, मतना दीजो किणी ने गाल, जीबड़ली या जुलम करावे, जीबड़ली या जुलम करावे, परनिंदा बिन धाप न आवे, जीबड़ली जद बस में होसी खुदरे बस में सबरस होसी, गाल गली बास में समरस होसी, जीबड़ली जद बस में होसी, जीबड़ली जद बस में होसी। मारी आखरी कविता है थमजा बादड़ी। हूँ तो थासूँ धायो बादड़ी बेमौसम जद नहायो बादड़ी, हूँ तो थासूँ धायो बादड़ी बेमौसम जद नहायो बादड़ी, डूंगर भीजे टिंगर धूजे फसला धरती दिनी पसार, बा माथे ओड़ारी मार, डूंगर भीजे टिंगर धूजे फसला धरती दिनी पसार, बा माथे ओड़ारी मार, थारे आगे किणी रहना चली, थारे आगे किणी रहना चली, अब तो थबजा बादड़ी, अब तो थबजा बादड़ी, जद उड़ी का तदना आवे धरती माँ आंसू ढड़कावे, जद उठी को तदना आवे धरती माँ आंसू ढड़कावे, पण जद तू बेमौसम बरसी हूँ तो हो गयो कायो बदड़ी, हूँ तो हो गयो कायो बादड़ी, रहूं कियो उमायो बादली, रहूं किया उमायो बादली, टूट्या छप्पर छान माचली बस कर थमजा अबे बादली, टूट्या छप्पर छान माचली बस कर थमजा अबे बादली, तीरारी बरसात करीसू ओड़ारी बिछात करी तू, तीरारी बरसात करी तू ओड़ारी बिछात करी तू, जीव जिनावर थरथर काप्या मीनखारो अपघात करो तू, घाव किणी रो नी भरो तू, घाव किणी रो नी भरो तू, नी रेवे तू कदे सांच ली, नी रेवे तू कदे सांच ली, बस कर थबजा अवे बादली, बस कर थबजा अवे बादली, कड़कड़ करती जद तू गाजे भूंडी निसरमी सी तू लागे, कड़कड़ करती जद तू गाजे भूंडी निसरमी सी तू लाजे, एड़ो काम नी तने न साजे, एड़ो काम तने न साजे, थासू काल कुसुम्बो भाजे, अब तू टकटक करती जावे, अब तू टकटक करती जावे, लोग बतलावे तने भली, लोग बतलावे तने भली, अब तो थमजा बादड़ी, अब तो थमजा बादड़ी, हाय लागैली तने बादड़ी थमजा सुन ले धीठ बादड़ी, कोप किसाना रेसूँ डरतूँ, कोप किसाना रेसूँ डरतूँ, कोई ऊंधो काम

0: करतूँ, मने तार फेर इतरतूँ, लोग केवला विपदा टली, लोग केवला विपदा टली, थमजा बसकर अबे बादली, थमजा बसकर अबे बादली, थमजा बसकर अबे बादली।
1: सौरभ कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी कविता पाठ, कवि थे श्री नगेंद्र नारायण किराड़ू।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
6: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
5: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
6: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
5: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
6: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
5: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
6: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
5: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
6: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज की कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से और राज्य के पांचों विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक के 3500 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क को मजबूत किया जाएगा। बजट 2026-27 की घोषणा के तहत स्वीकृत इन परियोजनाओं से आवागमन अधिक सुगम होगा और दूर दराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से किसानों, युवाओं, उद्यमियों और आमजन को सुविधा मिलेगी। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही आधारभूत ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। राज्य के 84 शहरों में नगरीय आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर करीब 9,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP के पांचवें चरण के तहत होने वाले इन निर्माण कार्यों की जानकारी देने के लिए आज से संवाद कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। ये संवाद कार्यक्रम 11 अगस्त तक चलेंगे। इस दौरान प्रतिभागियों से सुझाव और फीडबैक भी लिया जाएगा। गौरतलब है कि पांचवें चरण में अपशिष्ट जल और ठोस प्रबंधन के लिए शहरी यातायात सुधार और विरासत संरक्षण सहित अन्य कामों के जरिए इन शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। 67 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से अपशिष्ट जल प्रबंधन किया जाएगा। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू हो गई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस प्रयोगशाला में आयुर्वेदिक दवाओं की वैज्ञानिक जांच की जाएगी। इससे नकली और मिलावटी दवाओं की पहचान आसान होगी और जांच के लिए दूसरे राज्यों की प्रयोगशालाओं पर निर्भरता समाप्त होगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। यहाँ यूवी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर सहित 6 अत्याधुनिक मशीनें स्थापित है। आयुर्वेदिक दवाओं में एलोपैथिक दवाओं की मिलावट का भी पता चलेगा। शुरुआत में किडनी, लीवर, हड्डियों व पाचन तंत्र से जुड़ी दवाओं की जांच होगी। भारी वस्तुओं जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम के अवशेषों का विशेष परीक्षण किया जाएगा। कुछ महीनों में विश्वविद्यालय की अपनी प्रयोगशाला को भी इससे जोड़ा जाएगा। आगे चलकर कैंसर, आर्थराइटिस और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी दवाओं की भी जांच होगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बाजार से दवा नमूनों की नियमित जांच की जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में 587 दवा नमूनों की जाँच की गई। जाँच में 579 नमूने मानक गुणवत्ता के अनुरूप मिले, जबकि 8 नमूने अमानक पाए गए। इनमें एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और अन्य दवाएं शामिल हैं।

0: राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर से रामेश्वरम के लिए दूसरी विशेष ट्रेन कल रवाना की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने डहर के बालाजी रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से जयपुर संभाग के 970 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा पर गए हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 30 अधिकारियों और कर्मचारियों का दल भी उनके साथ गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को सुरक्षित और सुविधाजनक तीर्थ यात्रा कराई जा रही है।
1: ये मैं मानती हूँ बहुत बड़ा काम हुआ है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये वरिष्ठ जन है, इनके बारे में आजकल कोई नहीं सोचता, परिवार जन भी नहीं सोच पाते, सब इतने व्यस्त रहते हैं के बारे में सरकार ये कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी जो तीर्थ स्थल है जो वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे जाएंगे, उसके लिए पूरी व्यवस्था। और अगर आप देखेंगे इस ट्रेन में भोजन की व्यवस्था है, फिर बीच में अगर कहीं पर स्टॉपेज होगा तो वहाँ रहने की भी व्यवस्था सरकार कर रही है, बाकी सारी व्यवस्थाएं ताकि वो सुरक्षित अपने स्थान पे अपने तीर्थ पे पहुंचे, वहाँ दर्शन करें और वापिस सुरक्षित पहुँच जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे नई रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। संभावना जताई जा रही है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मेडिकल परामर्श समिति की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान 12 अगस्त तक होगा। उम्मीदवार कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किया जाएगा। जो उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं उन्हें 18 से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में मदद करने के लिए चरण दर चरण ट्यूटोरियल वीडियो जारी किए हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए उम्मीदवार टोल फ्री नंबर 1800-102-7637 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य के 5 विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए अभ्यर्थी 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत कनिष्ठ अभियंता के 869, कनिष्ठ लेखाकार के 371 और कनिष्ठ सहायक तथा वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के 765 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयन के लिए ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट और हेल्पलाइन पर उपलब्ध कराई गई है। जैसलमेर में युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार से जोड़ने के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप संवर्धन कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से स्टार्टअप इंडिया के तहत आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं और संभावित उद्यमियों को स्टार्टअप से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कार्यशाला के माध्यम से जिले में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने तथा स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान स्टार्टअप इंडिया एवं आईआईटी मान्यता प्राप्त प्रक्रिया, राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, वित्तीय सहायता, निवेश के अवसर, व्यवसाय मॉडल तैयार करने की प्रक्रिया, नवाचार प्रबंधन, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल तकनीकों के उपयोग तथा व्यवसाय विस्तार की रणनीतियों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों के लिए रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू श्रेणियों का संशोधित वर्गीकरण लागू कर दिया है। मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि ये वर्गीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृतियों और सहमति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि संशोधित सूची में सीमेंट, डेयरी, अस्पताल

0: होटल, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, निर्माण परियोजनाओं और औद्योगिक पार्क सहित कई नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू की गई है। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से और राज्य के पांचों विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गायत्री सोलंकी के गाए लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायत्री सोलंकी के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
0: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है क्योंकि कल कभी नहीं आता।
2: जी
0: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
0: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
0: जी बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देख कर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
0: जी वो तो है,
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है।
2: जी
0: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे।
2: जी
0: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
2: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए जी क्या होगा।
0: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।

0: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे। पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
0: देखते देखते एक घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
0: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
1: और

0: इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
1: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
0: वो कैसे?
1: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
0: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
1: जी।
0: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
1: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
0: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
1: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
0: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं, और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
1: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
0: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
1: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ, मिलेंगे फिर एक
1: नई जानकारी के साथ।
0: श्रोताओ, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज,
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज,
4: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
5: आज्ञा दीजिए महाराज।

0: महाराज, कैसी शर्त?
1: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
0: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
3: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
4: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
3: लगता है खुद ही बोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
2: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
5: आज खेल में बड़ा मजा,
6: बहुत मजा आ गया। क्या गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
7: हाँ, गोल हो गया। किसी का
2: दिल खुश हो गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
8: कहां फंस गई?
9: ए, इधर क्या देख रहे हो?
10: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
8: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
9: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
11: चलो चलो चलो,
10: अरे भाई निकलो। लेकिन
8: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
2: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
12: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।

0: ठीक है,
1: कोशिश करते हैं।
0: हाँ
1: है, है, है, है, है, है,
2: निकल गया।
3: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
0: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
4: जी बाबा।
0: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
4: तो क्या इनाम देते हो?
0: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
3: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
4: पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला।
5: तुम्हें क्या लगता है? महाराज आ रहे हैं।
4: अरे अरे,
5: सुजान सिंह जी भी आ गए।
3: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
6: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
7: बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत बहुत बहुत।
6: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
4: सही बात है।
6: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
4: बिल्कुल सही कहा,
6: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
3: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
4: अच्छा इंसान, हमेशा सही काम करेगा।
0: भले बिल्कुल
3: भले। देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
7: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत खूब चुनाव किया।
8: महाराज की
9: जय हो।
8: महाराज की
9: जय हो।
8: महाराज की
9: जय हो।
8: महाराज की
9: जय हो।
3: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
10: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
11: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
12: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
0: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था। उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
1: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम हमारी चिंता न करो।
0: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा, जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,

खबरें लेकर आता, काम काम कर गाना गाता, सबके मन को खुश कर जाता।

0: सके।
1: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
1: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
2: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
0: चूहे भाई, चूहे भाई।
3: क्या?
0: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है।
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
0: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसके साथी कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चलें। मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
0: हाँ हाँ, चलो
3: चलो चलो कौवे भाई,
0: चलो चलो, चलो, चलो, चलो।
2: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुंचे।
1: चूहे भाई, जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। FM पर आप हमें सुन रहे हैं 101.6 मेगा हर्ट्स पर।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए सुनिधि चौहान के स्वर में। फिल्म का नाम है अकीरा।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: कार्यक्रम का अगला गीत मीका सिंह और राजा हसन के स्वर में है। फिल्म का नाम है

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल के स्वर में है, फिल्म का नाम है जैकपॉट।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

शान और श्रेया घोषाल की युगल स्वर में अभी आपने फिल्म एक विवाह ऐसा भी, इस फिल्म का गीत सुना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत राहत फतेह अली खां के स्वर में है। फिल्म का नाम है कमांडो।

0: वो पहुंच रहे हैं
1: हम। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में हिट स्टोरी फिल्म का गीत, हिट स्टोरी 4 फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर और संजय गुप्ता ने, संगीत था आर्को का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत। शंकर महादेवन की आवाज़ में फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है शंकर एहसान और लॉय का।

शंकर महादेवन की आवाज़ में गाए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 11 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। गीत को लिखा है

हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत को लिखा था अख्तर रोमानी ने, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आया सावन झूमके। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना परंपरा फिल्म से ये गीत। गीत को लिखा था अनंत बख्शी ने, संगीत दिया था शिव हरि ने। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मंजिल। गीत को लिखा है योगेश ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में मंजिल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था योगेश ने, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है चुपके चुपके। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है एस डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में दो बीघा ज़मीन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल थे शैलेंद्र के, संगीत दिया था शैल चौधरी का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है आशीर्वाद। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत है वसंत देसाई का।

आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना जुनून फिल्म का ये गीत। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जुर्माना, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में जब याद किसी की आती है फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत दिया था मदन मोहन ने। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आशा। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना आशा फिल्म से ये गीत। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गबन। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए गबन फिल्म की इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 12 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
2: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as

0: as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
3: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
1: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शिरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में 12:40 पर, रात्रि 8:15 पर, 9:15 पर और दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

दोपहर 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत आकाशवाणी बीकानेर के ठोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे हिंदी भाषा देश की शान है। मैथिली शरण गुप्त, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई पुण्यतिथि, बच्चों को जमीन से जुड़ना सिखाएं, संस्कारवान बनाएं। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता ब्रेल लिपि, दृष्टिहीनों के लिए ज्ञान की रोशनी। वार्ताकार होंगी श्रीमती मंजू यादव। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रसोई से कुछ रेसिपीज और कुछ बीटी टिप्स।

युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा युवाओं के लिए वित्तीय साक्षरता है आवश्यक। कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु जानकारी। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई पुण्यतिथि, अनुशासन से सफलता, जैसलमेर का किला और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जैसे विषयों पर। कार्यक्रम में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज़।

आकाशवाणी जयपुर केंद्र से कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का समय रहेगा शाम 6:40। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत सुनेंगे शाम 7:00 आकाशवाणी बीकानेर के ठोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे खरीफ में बाजरे की लाभकारी खेती, वर्षा जल संचय, भूमि रिचार्ज, पौधारोपण, प्रधानमंत्री फसल बीमा, पशुओं को आफरा रोग से बचाएं। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता छत पर सब्जियों की जैविक खेती। वार्ताकार होंगे श्री सूरज प्रकाश, प्रस्तुति होगी श्री रेवंत राम लेघा की, संयोजन होगा अमित सिंह का। कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम पर जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जानकारी। कार्यक्रम संसद समीक्षा का समय रहेगा रात्रि 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं बद्री व्यास और मलयादास की आवाजों में।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला लोकगीत लीजिए, सुनिए भूंगर खान की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में अगला गीत लोकगीत लीजिए, सुनिए छोटी बानो गणपतलाल डांगी और रंजना चौधरी की आवाजों में।

दीपाली अली और साथियों की आवाज़ों में ये लोकगीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला लोकगीत सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज़ों में।

सीमा मिश्रा और साथियों की आवाजों में गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:40 होने को हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ऐश किंग और शाशा तिरुपति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। गीत को लिखा है इराफत महमूद और तनिष्क बागची ने। संगीत है तनिष्क बागची का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान
1: जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक आइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़े आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है सर। गीत को लिखा है कतिल शिफाई ने, संगीत है अनु मलिक का।

कुमार सानू की आवाज़ में आपने सुना सर फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था कतील सिफई ने, संगीत था अनु मलिक का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत उस्ताद सुल्तान खान, शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। गीत को लिखा है महबूब ने, संगीत है इस्माइल दरबार का।

उस्ताद सुल्तान खान, शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में गाए हम दिल दे चुके फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।

समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। आरबीआई ने रेपो दर में बदलाव नहीं करते हुए 5.25% पर ही बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी

0: सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह भी किया। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की आज सातवीं सालगिरह है। वर्ष 2019 में आज ही के दिन संसद ने अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को खत्म कर दिया था जिनके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ था। इससे पहले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था। ये एक अस्थायी प्रावधान था जिसने राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा दिया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने NCR में अतिरिक्त नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, नगर परिषदों, नगर बोर्डों और शहरी स्थानीय निकाय को गंभीर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की शक्तियां प्रदान की हैं। इनमें अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी और नीमराणा सहित NCR के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि इसका उद्देश्य धूल नियंत्रण उपायों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है ताकि निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से होने वाले कण प्रदूषण को कम किया जा सके। नागौर जिले के डेगाना उपखंड में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक ही दिन में 1,00,000 पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। भैरुंदा और डेगाना पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों ने जन सहभागिता से ये लक्ष्य पूरा किया है। अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में 4,000 पौधे लगाए गए। मुख्य कार्यक्रम सुरपुरा, निम्बुला बिस्वा और पिरामिड वैली स्थित तेजाजी हरसोर परिसर में आयोजित हुआ। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बरसात हुई। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार डीग जिले के रारहे में सबसे अधिक 66 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज 17 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से उत्तर पूर्वी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 7 और 8 अगस्त को भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित राजस्थान समान सिविल संहिता UCC पर आमजन से ऑनलाइन सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। राजस्थान के मूल निवासी निर्धारित पोर्टल या QR कोड के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने नागरिकों से अधिक संख्या में इस प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। प्राप्त सुझावों पर विचार कर प्रस्तावित विधेयक को और अधिक व्यापक, प्रभावी और जनहितकारी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज प्रस्तुत करता है अन्विती गोस्वामी और मीनाक्षी स्वर्णकार।

0: सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में।
1: और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दो रेडियो सखियां, मैं मीनाक्षी स्वर्णकर
0: और मैं अन्विति गोस्वामी।
1: तो कीजिए स्वीकार हमारा स्नेह भरा नमस्कार।
0: मीनाक्षी, ये कार्यक्रम एक ठहराव सा है ना, जहाँ वक्त भी आकर घड़ी देखना भूल जाता है ना।
1: और हम तो चाहते भी यही है कि जब भी हम मिले तो नजरें घड़ी की तरफ जाए ही ना, क्योंकि घड़ी की लगातार चलती सुइयां हमें गुजरते लम्हों का एहसास कराने लगती हैं।
0: और हम भी तो यही चाहते हैं ना कि इन पलों को हम गिने नहीं उंगलियों में, बल्कि भरपूर जी लें कुछ खूबसूरत बातों के साथ और खूबसूरत तरानों के साथ।
1: अब पर पता है अन्विति, अक्सर होता ये है कि अपने साथ होते हैं ना तो वो समय कब पंख लगा के उड़ जाता है पता ही नहीं चलता।
0: हाँ, लेकिन होता तो ये भी है कि अपने अगर आसपास ना हो ना तो समय जैसे ठहर ठहर के बीतता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब देखो ना, कुछ ही दिनों पहले की बात है, छुट्टी का दिन था और पतिदेव और मेरी बेटी, जो अब कुछ दिनों में ही शहर से बाहर दूसरे शहर में कॉलेज में पढ़ने जाने वाली है, इसी सिलसिले में कुछ खरीदारी करने बाजार गए थे और रह गई घर पे मैं अकेली।
1: अच्छा, जरूर तुम्हारी ओवरथिंकिंग शुरू हो गई होगी है ना।
0: हाँ।
1: कि बेटी बाहर पढ़ने चली जाएगी तो कैसा लगेगा मुझे।
0: बिल्कुल सही पहचाना, उसके स्टडी रूम में मैं खड़ी हुई यही सब सोच रही थी कि मुझे कैसा लगेगा। उसके सामान देख रही थी, उसकी किताबें देख रही थी और सोच रही थी यही सब कुछ कि क्या होगा मेरा। और बारिश शुरू हो गई।
1: ओहो, तब तो तुम्हारा मन कुछ प्रसन्न हुआ होगा, ऐसे सुहाने मौसम देखकर तो मन खुद ब खुद हल्का हो जाता है।
0: अरे कहाँ, मन तो अभी भी वहीं अटका हुआ था। फिर सोचा कि चलो मन बहलाने के लिए चाय बना लेती हूँ, बालकनी में जाकर बारिश का आनंद ले लेती हूँ, शायद मन कुछ हल्का हो जाए। पर बेटी और पतिदेव के बारिश में भीग जाने की चिंता शुरू हो गई। और हाँ, और चाय भी वो स्वाद नहीं दे रही थी और गली में आते जाते वाहनों को देखकर लग रहा था कि अब ये लोग आ जाएंगे, शायद अब आ जाएंगे।
1: ओहो, इतनी बेचैनी, तब तो तुम्हें छत पर जाकर भीगी भीगी फुहारों को अपने चेहरे पर महसूस करने की जरूरत थी, जिससे तुम्हारे मन को कुछ राहत मिल जाती।
0: एक विचार ये भी आया था, पर जैसे ही छत की सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए मैंने तो मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बीच ये दोनों आ गए घर और दरवाजे की घंटी बजाने लगे और मैं सुन ही ना पाऊँ, तो फिर कदम वहीं ठिटक कर रह गए।
1: ओहो, तो ऐसे ही इंतजार करते करते तुम्हारा वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो रहा था।
0: और तभी दरवाजे की घंटी बजी और बेटी की खिलखिलाहट और पतिदेव की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं झट से दरवाजे की तरफ दौड़ी और उनके हाथों में ताजी ताजी सब्जियां थी और आते ही उनकी फरमाइशें भी शुरू हो गई कि जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े बना दो और साथ में अदरक वाली चाय भी बना दो। और मैं भी मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चलती। और पता है, उस पल ये मुझे एहसास हुआ कि असली सुकून सिर्फ मौसम में नहीं है बल्कि अपनों की मौजूदगी में होता है।
1: और फिर चाय में वही स्वाद और बारिश में वही सुकून लौट आया होगा ना।
0: बिल्कुल लौट आया, बारिश और खूबसूरत लगने लगी और चाय की मिठास बढ़ गई।
1: शायद खुशियों का भी यही राज है अन्विति, ये जगहों या मौसमों में नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए गए पलों में बसती है।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए सखियों, इसी अपनेपन से भरे एहसासों के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला ये गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी

0: माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: अन्विति, जैसा कि तुम बता रही हो कि तुम्हारी बेटी बाहर दूसरे शहर जा रही है अपने फ्यूचर स्टडीज के लिए, तो तुम अकेलापन तो महसूस करोगी ही, और सच बताना क्या साथ ही तुम्हें थोड़ा डर भी महसूस हो रहा है?
4: डर? अरे बहुत लग रहा था। आजकल जब बच्चे पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाते हैं ना, तो हर अभिभावक के मन में न जाने कितने सवाल होते हैं कि कैसे रहेगा बच्चा, किन लोगों के साथ रहेगा, अपना ध्यान रख पाएगा या नहीं, या फिर कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए।
3: हाँ।
4: और मैंने ये महसूस इसलिए भी किया कि हाल ही में जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट तुमने देखा होगा, जो खबरों में था,
3: जंतर मंतर,
4: जो सोशल मीडिया अखबारों में हम देख ही रहे थे, उनमें कितने ही बच्चों ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग खुलेआम किया है ना। और मुझे लगा कि अपनी बात दृढ़ता से रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भाषा हमारी मर्यादित होनी चाहिए। तो बस मैं भी यही सोच रही थी कि कहीं बेटी भी पीयर प्रेशर में पढ़कर अपनी भाषा, अपने संस्कारों को ना भूल जाए।
3: भाई ये तो हर पेरेंट्स की चिंता होती है, लेकिन तुम कह रही हो कि मन घबरा रहा था, डर लग रहा था, पास्ट टेंस में बात कर रही हो, तो क्या अब डर नहीं लग रहा? अभी तो बेटी के कॉलेज जाने में कुछ समय है, तो तुम था में क्यों बात कर रही हो?
4: असल में इन दिनों उसके जाने को लेकर जो तैयारियां चल रही है ना, उस दौरान कुछ ऐसी बातें हुई कि मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगा।
3: अच्छा, जैसे?
4: जैसे पैकिंग करते समय सबसे पहले उसने भगवान की छोटी सी तस्वीर बड़े प्यार से अपने बैग में रखी, और फिर अपने नित्य नियम पाठ करने वाली किताब भी साथ रखी, और थोड़ी देर बाद बोली कि इस बार रक्षाबंधन में मैं पहली बार अपने भाई को डाक से राखी भेजूंगी, तो समय रहते मम्मी खरीद लेते हैं राखी।
3: अरे वाह, ये सुनकर तो लग रहा है कि दूरी सिर्फ शहरों की होगी, संस्कारों की नहीं। और अन्विति, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित होते रहते हैं, तो ऐसे माहौल में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति और अपनी रीति रिवाजों से जुड़े रहते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा तुमने, तो ये तुम्हारी बात भी मुझे काफी राहत दे गई है। और पता है कुछ और भी ऐसी बातें हुई जिन्होंने मेरा मन काफी हल्का कर दिया।
3: अच्छा, वो क्या थी?
4: वो ये कि बेटी ने नई जगह जाने से पहले अपने होने वाली रूममेट से भी बातचीत कर ली, पहचान बनानी शुरू कर दी है, और दूसरी तरफ जाने से पहले अपने स्कूल की जो सहेलियां हैं ना, उनसे भी एक एक करके मिल रही है।
3: अरे ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है, पुराने रिश्तों को संभालते हुए नए रिश्तों का स्वागत करना। ऐसे बच्चे जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ अपना परिवार का माहौल बना लेते हैं।
4: बिल्कुल।
3: वैसे अन्विति, एक बात और पूछना चाहूंगी।
4: पूछो।
3: कि माता पिता को तो बच्चों की चिंता रहती ही है, लेकिन हमसे भी ज्यादा चिंतित रहते हैं घर के बुजुर्ग, यानी बच्चों के दादा दादी, नाना नानी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है?
4: बिल्कुल सही कहा तुमने, बड़े बुजुर्ग तो हमसे भी ज्यादा भावुक होते हैं ऐसे मामलों में, और बिटिया के बाहर जाने की बात से तो सबसे ज्यादा चिंतित भी हैं। बार बार बस यही कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, खाना समय पर खाना, ज्यादा देर जागना मत।
3: अब भाई उनकी हर नसीहत में प्यार ही प्यार है।
4: और बेटी ने भी बड़े प्यार से उनसे वादा किया है कि मैं आप लोगों से रोज बात करूंगी, लेकिन आप भी वादा करें कि दवाइयां समय से लेंगे, अपना पूरा ख्याल रखेंगे। और उस पल को मुझे लगा कि बेटी अब बड़ी हो गई है, हम उसकी चिंता करते हैं और वो हमारी चिंता करने लगी है।
3: वाह, सुनकर लग रहा है कि बेटी अपने साथ घर के संस्कार और अपनों की फिक्र भी लेकर जा रही है।
4: बिल्कुल, और अभी जितने दिन भी वो यहाँ है ना, उसने एक एक पल हमारे नाम कर दिए। सुबह सुबह मेरे साथ वॉक पर जाना, भाई बहनों के साथ में ड्राइंग करना, मस्ती करना, दादा दादी से पुराने किस्से सुनना, चाची के साथ रसोई में हाथ बटाना, नाना नानी से वीडियो कॉल पर बात करना, उसने अभी बाहर जाते हुए सबसे पहले यही सब करना शुरू किया है।
3: अरे वाह,
4: मुझे उसे भेजते हुए डर कम और गर्व ज्यादा महसूस हो रहा है।
3: भाई अब तो मुझे भी पूरा भरोसा है कि वो अपने सपनों को उड़ान देने के साथ साथ अपने घर की खुशबू, अपने संस्कार और अपने रिश्तों की मिठास भी साथ लेकर जाएगी।
4: बिल्कुल।
3: तो सखियों, अपने बच्चों को ऊंची उड़ान जरूर दीजिए, लेकिन उनकी जड़ों को इतना मजबूत बनाएं कि वे जहां भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अपनी मिट्टी, अपने परिवार और संस्कारों से जुड़े रहें।

0: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित

0: करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सक्यों ज्ञान की दुनिया तक पहुंच हर व्यक्ति का अधिकार है, और दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए इस अधिकार को साकार बनाती है ब्रेल लिपि। ये क्या है, किस तरह से उपयोगी है दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए, ये सब जानेंगे एक वार्ता के जरिए, जिसका विषय है ब्रेल लिपि, दृष्टिहीनों के लिए ज्ञान की रोशनी। वार्ताकार हैं मंजू यादव।
5: ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों के लिए स्पर्श द्वारा पढ़ने और लिखने की एक प्रणाली है, जिसमें उभरे हुए बिंदु वर्णमाला के अक्षरों को दर्शाते हैं। इसमें विराम चिन्ह के समतुल्य शब्द भी होते हैं और अक्षरों के समूह को दर्शाने के लिए प्रतीक भी होते हैं। ब्रेल लिपि की प्रत्येक पंक्ति को बाएं से दाएं हाथ चलाकर पढ़ते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों हाथों का उपयोग होता है और इसे तर्जनी उंगलियों से पढ़ा जाता है। ब्रेल को पढ़ने की औसत गति लगभग 125 शब्द प्रति मिनट होती है, लेकिन 200 शब्द प्रति मिनट तक की गति संभव है। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिबाधित व्यक्ति लिखित शब्दों की समीक्षा और अध्ययन कर सकते हैं। वे वर्तनी, विराम चिन्ह, अनुच्छेद और फुटनोट जैसी विभिन्न लिखित परंपराओं से परिचित हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेल लिपि दृष्टिहीन व्यक्तियों को मनोरंजक और शैक्षिक पठन सामग्री तक पहुंच प्रदान करती है। अनुबंध, नियम, बीमा पॉलिसियां, निर्देशिकाएं और रसोई की किताबें भी उतनी महत्वपूर्ण हैं, जो सभी वयस्कों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। ब्रेल लिपि के माध्यम से दृष्टिहीन व्यक्ति संगीत, भजन, ताश के माध्यम से अपने शौक और सांस्कृतिक संवर्धन भी कर सकते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए पठन को सक्षम बनाने के लिए वर्षों से कई अन्य तरीके आजमाए गए हैं, हालांकि उनमें से कई उभरे हुए अक्षरों के रूपांतर थे। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि ब्रेल प्रणाली सफल रही है, क्योंकि यह आँखों के लिए बनाए गए संकेतों की नकल न करने के बजाय उंगलियों के पोरों के लिए बनाए गए संकेतों के एक तर्कसंगत क्रम पर आधारित है। ब्रेल की प्रेरणा। ब्रेल लिपि का इतिहास 1800 के दशक के शुरुआती वर्षों तक जाता है। चार्ल्स बार्बियर नाम के एक व्यक्ति ने पढ़ने और लिखने के लिए एक अनूठी प्रणाली विकसित की, जो पारंपरिक कलम और कागज पर निर्भर थी। इन्हीं से प्रभावित होकर ब्रेल लिपि का आविष्कार फ्रांस के महान वैज्ञानिक लुई ब्रेल ने 19वीं शताब्दी में किया था। बचपन में ही दृष्टि खो देने वाले लुई ब्रेल ने यह अनुभव किया कि अंधेरे में भी पढ़ने लिखने की एक ऐसी पद्धति होनी चाहिए जिससे ज्ञान का द्वार सबके लिए खुल सके। 1824 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने यह लिपि विकसित की। ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं का एक आधारभूत शैल होता है, जो 2 स्तंभों और 3 पंक्तियों में व्यवस्थित होता है। इन बिंदुओं के विभिन्न संयोजन से अक्षर, शब्द, संख्याएं और यहाँ तक कि गणित और संगीत के चिन्ह भी लिखे जा सकते हैं। यही कारण है कि ब्रेल केवल पढ़ने लिखने का माध्यम ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ज्ञान की भाषा बन गया है। भारत में ब्रेल लिपि का विशेष महत्व है। यहाँ हिंदी सहित लगभग सभी भारतीय भाषाओं के लिए ब्रेल का अनुकूलन किया गया है। भारतीय

यह ब्रेल कोड के तहत दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ, साहित्य और पत्र पत्रिकाएं अब ब्रेल में उपलब्ध हैं। तकनीक के युग में भी ब्रेल की प्रासंगिकता बनी हुई है। आज कंप्यूटर आधारित डिस्प्ले और ब्रेल प्रिंटर उपलब्ध हैं, जिनसे दृष्टिबाधित लोग इंटरनेट और डिजिटल दुनिया से जुड़ पा रहे हैं। मोबाइल ऐप्स और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के साथ ब्रेल का संयोजन उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। ब्रेल के जनक लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कूपवरे गांव में हुआ था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, जब उन्होंने गलती से अपने पिता की सुआ से अपनी आंख में वार कर लिया था। ब्रेल के पिता चमड़े का काम करते थे और चमड़े के सामान में सुआ के छेद कर देते थे। 11 साल की उम्र में ब्रेल चार्ल्स बार्बियर की कोड में बदलाव करने की प्रेरणा मिली, ताकि वे अपने जैसे नेत्रहीन लोगों के लिए एक कुशल लिखित संचार प्रणाली बना सकें। एक साल पहले उन्होंने पेरिस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्लाइंड में दाखिला लिया। अगले 9 सालों का ज्यादातर समय उन्होंने उभरे हुए बिंदुओं वाली उस प्रणाली को विकसित करने और परिष्कृत करने में बिताया, जिसे आज ब्रेल के नाम से जानते हैं। ब्रेल के इतने सारे काम के बाद कोड अब 12 की बजाय केवल 6 बिंदुओं वाली कोशिकाओं पर आधारित था। इस महत्वपूर्ण सुधार का मतलब था कि उंगली की नोक एक छाप से पूरी कोशिका इकाई को घेर सकती थी और एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक तेजी से जा सकती थी। समय के साथ दुनिया ने धीरे धीरे दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए लिखित संचार के मूल रूप में वैसा ही है जैसा उन्होंने इसका आविष्कार किया था। ब्रेल पढ़ाने की विधि। सबसे पहले बच्चों को 6 बिंदुओं का खांचा यानी सेल समझाया जाता है। बिंदुओं को 1 से 6 तक क्रमांक दिया जाता है। बिंदुओं का खांचा समझाया जाता है। शिक्षक हाथ पकड़कर बताता है कि कौन सा बिंदु कहाँ है। बच्चों को कागज या स्लेट पर उभरे हुए बिंदु छूकर पहचानने का अभ्यास करवाया जाता है। उंगलियों की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए खेल और अभ्यास करवाए जाते हैं। अक्षरों और शब्दों की पहचान। इसमें पहले सरल अक्षर अ, ब, क, ल दिए जाते हैं, फिर उनसे बने छोटे शब्द पढ़ाए जाते हैं। बच्चे उंगलियों से दाएं से बाएं पंक्ति पर चलते हुए अक्षर पहचानते हैं। लेखन सिखाना। ब्रेल लिखने के लिए स्लेट और स्टाइलस का प्रयोग होता है। स्लेट में कागज लगाकर स्टाइलस से दबाकर बिंदु बनाए जाते हैं। कंप्यूटर आधारित ब्रेल टाइपराइटर और इलेक्ट्रॉनिक्स नोट टेकर भी उपलब्ध होते हैं। क्रमिक अभ्यास। संख्याएं, गणितीय चिन्ह, विराम चिन्ह और विज्ञान के चिन्ह धीरे धीरे सिखाए जाते हैं। संगीत और भाषाओं की शिक्षा के लिए ब्रेल कोड भी उपलब्ध हैं। शिक्षा का आधार। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में दृष्टिबाधित छात्र ब्रेल बुक के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। गणित, विज्ञान, संगीत जैसे विषय भी ब्रेल में उपलब्ध हैं। स्वावलंबन। ब्रेल लिपि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। वे स्वयं पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। डिजिटल युग में अनुकूलन। आज ब्रेल डिस्प्ले और ई बुक रीडर मौजूद है, जो कंप्यूटर और मोबाइल से जुड़कर डिजिटल जानकारी को ब्रेल लिपि में बदल देते हैं। इससे दृष्टिबाधित लोग इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया तक पहुंच बना पा रहे हैं। सरकारी और सामाजिक योजनाएं। कई देशों में, जिनमें भारत भी शामिल है, सरकारी योजना मुद्रा नोटों और संकेत बोर्डों में ब्रेल का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, ताकि दृष्टिबाधित नागरिकों को आसानी हो। समान अवसर।
ब्रेल लिपि के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाएं दे पा रहा है, उच्च शिक्षा और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसके

अलावा कुछ चुनौतियां भी है इसमें। ब्रेल पुस्तकें सीमित संख्या में छपना, प्रशिक्षण की कमी और महंगे ब्रेल उपकरण, लेकिन तकनीक की सहयोग और सामाजिक जागरूकता से यह चुनौतियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। आजकल बहुत से दृष्टिबाधित लोग ऑडियो बुक्स और स्क्रीन रीडर पर अधिक निर्भर हो गए हैं। इस कारण ब्रेल सीखने वालों की संख्या कुछ देशों में कम हो गई है, लेकिन मेरा मानना है कि साक्षरता और भाषा की गहराई समझने के लिए ब्रेल की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। आज भी ब्रेल लिपि पूरी दुनिया में कामयाब और उपयोगी है। यह केवल शिक्षा का साधन नहीं, बल्कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के आत्मविश्वास, स्वाभिमान और अधिकारों का प्रतीक है। आज जब हम डिजिटल साक्षरता और समानता की बात करते हैं, तो ब्रेल की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। इसलिए ब्रेल को आगे बढ़ना और इसे आधुनिक तकनीक से जोड़ना हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है। अंत में यही कहना चाहूंगी।

0: ब्रेल सीखने वालों की संख्या कुछ देशों में कम हो गई है, लेकिन मेरा मानना है कि साक्षरता और भाषा की गहराई समझने के लिए ब्रेल की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। आज भी ब्रेल लिपि पूरी दुनिया में कामयाब और उपयोगी है। यह केवल शिक्षा का साधन नहीं बल्कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के आत्मविश्वास, स्वाभिमान और अधिकारों का प्रतीक है। आज जब हम डिजिटल साक्षरता और समानता की बात करते हैं तो ब्रेल की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। इसलिए ब्रेल को आगे बढ़ना और इसे आधुनिक तकनीक से जोड़ना हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि ब्रेल लिपि एक लिपि मात्र नहीं है, बल्कि यह दृष्टिहीनों के लिए आंखों का उजाला है। जिस प्रकार आंखें हमें प्रकाश देती है, उसी प्रकार ब्रेल लिपि उन्हें ज्ञान का प्रकाश देती है। हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक ब्रेल साक्षरता को बढ़ावा दें और दृष्टिबाधित साथियों को समाज की मुख्य धारा में बराबरी का स्थान दें।
1: तो सखियों, अगर सही अवसर और साधन मिले तो हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ब्रेल लिपि भी दृष्टिहीन भाई बहनों को आगे बढ़ने और सम्मान के साथ जीने का एक बेहतरीन जरिया है। ये जाना हमने वार्ता के जरिए, जिसका विषय था ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों के लिए ज्ञान की रोशनी। वार्ताकार थी मंजू यादव। अब आइए बढ़ते हैं संगीत की दुनिया में।

0: राष्ट्र की असली ताकत केवल उसके स्मारकों या इतिहास की किताबों में नहीं होती, बल्कि उन महान व्यक्तित्वों की स्मृतियों में होती है जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्तित्व समय के साथ भले ही हमारे बीच न रहे, लेकिन उनके विचार और उनके आदर्श हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, और जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं को याद करते हैं ना, तो कुछ ऐसे नाम भी सामने आते हैं जिनका योगदान बहुत बड़ा था, लेकिन जिनके बारे में आज उतनी चर्चा नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए।
0: सही कहा तुमने अन्विति। आजादी विशेष इस कड़ी में आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व की, जिन्हें पूरा देश लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई के नाम से जानते हैं। उनकी पुण्यतिथि हमें उनके जीवन, उनके संघर्ष और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को याद करने का अवसर देती है।
1: सचमुच मीनाक्षी, उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची लोकप्रियता पद या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि ईमानदारी, सेवा और जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों से मिलती है। आइए बहनों, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को थोड़ा और करीब से जानने का प्रयास करते हैं।
0: गोपीनाथ बोरदोलई का जन्म 6 जून 1890 को असम के नगांव जिले के राहा नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और वकालत के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाया, लेकिन जब देश की पुकार सुनाई दी तो उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की सुविधाओं के ऊपर उठकर राष्ट्रहित को रखा और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए।
1: बिल्कुल, महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन और दूसरे राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अंग्रेजी शासन का विरोध करने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया।
0: अन्विति, मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि एक सशक्त और एकजुट भारत का निर्माण भी उनका सपना था।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो।
0: उनकी राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के प्रति समर्पण को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान केवल उनके व्यक्तित्व का नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भी सम्मान था।
1: बिल्कुल, आज जब हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं तो ये केवल उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं, बल्कि ये सोचने का भी समय है कि देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सेवा का भाव ही आज किसी भी समाज को आगे बढ़ाता है।
0: बिल्कुल, आज़ादी केवल अधिकारों का उत्सव नहीं, बल्कि कर्तव्यों का भी स्मरण कराती है। तो ऐसा ही योगदान दे रही है हमारी भारतीय सेना देश की सुरक्षा में। आइए सुनते हैं भारतीय सेना के नाम ये संदेश।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: अन्विति, हम बात कर रहे थे अपनी जड़ों से जुड़े रहने की, क्योंकि अपने संस्कारों से जुड़े रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
2: बिल्कुल।
1: और जड़ों की बात चली है तो एक और बात याद आई।
2: अच्छा, वो क्या?
1: यही कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे संस्कारों से ही नहीं बल्कि हमारी भाषा से भी होती है। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, समय की मांग को देखते हुए दूसरी भाषाओं पर भी अपनी पकड़ बनाए, लेकिन अपनी मातृभाषा और अपनी हिंदी से हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कह रही हो। दूसरी भाषाएं सीखना समय की जरूरत हो सकती है, लेकिन अपनी भाषा को भूल जाना कभी भी प्रगति नहीं हो सकती है। और हिंदी सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य, हमारी भावनाओं और हमारे अपनेपन की भाषा है।
1: बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी दिल से निकलती है, इसीलिए सीधे दिल तक पहुंचती भी है।
2: बिल्कुल, इसलिए तो कहा जाता है कि हिंदी हमारी शान है। जितनी सहजता से हम हिंदी में अपने मन की बात कह सकते हैं ना, शायद किसी और भाषा में नहीं कह पाए। लेकिन मीनाक्षी, आजकल देखा जाता है कि बच्चे हिंदी समझते तो हैं पर बोलने में झिझकते हैं। हाँ। और दूसरी भाषाओं का ज्ञान होना आधुनिकता की पहचान हो गया है ना। पर एक बात कहूँ, ऐसे कई देश हैं जो टेक्नोलॉजी में हमसे भले ही आगे हों लेकिन अपनी भाषा से उन्होंने नाता नहीं तोड़ा है। और हमें भी यही करना है कि अपनी भाषा पर हमें गर्व करना है। लेकिन मन में कई बार विचार आता है ऐसा कि हिंदी भाषा से जुड़ाव और अपनत्व बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए।
1: बहुत ही

0: छोटी छोटी बातों से शुरुआत की जा सकती है, जैसे दैनिक जीवन में हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, बच्चों का अच्छे हिंदी साहित्य से परिचय करवाएं, और ये भी कर सकते हैं कि रोज एक नया हिंदी शब्द सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करें।
1: और इसका एक मनोरंजक तरीका हो सकता है, जैसे मैं जब छोटी थी ना तो अखबार में जो वर्ग पहेली का कॉलम आता था ना वो भरा करती थी, तो इससे मेरी हिंदी के कई शब्दों की जानकारी हुई और हिंदी में मेरी पकड़ भी मजबूत हो गई। तो ऐसा कुछ हम अपने बच्चों को करा सकते हैं।
0: अरे वाह, और पता है तुम्हारी ही तरह मुझे भी एक अच्छी आदत है अपने मन की बातें डायरी में हिंदी में लिखना।
1: अरे
0: इससे भी हम भावों को सहजता से व्यक्त कर पाते हैं और हिंदी भाषा का ज्ञान भी सहज ही बढ़ता जाता है। और लिखने की तरह ही अखबार का पन्ना या फिर कोई हिंदी लेख कविता रोज पढ़ने की आदत डालें तो कुछ ही दिनों में हिंदी भाषा में आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा।
1: बिल्कुल, यानी हिंदी से प्रेम प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा कुछ नहीं करना है बल्कि छोटी छोटी आदतें अपनानी है ना।
0: और ये मीठी सी बोली बड़े से बड़े दिल का दरवाजा खोल देती है। आइए इसकी मिठास को महसूस करते हैं इस गीत के माध्यम से।

0: बहनों, अभी हमने हिंदी भाषा की गरिमा, उसकी मिठास और उसके गौरव की चर्चा की, लेकिन अन्विति, किसी भी भाषा की पहचान केवल उसके शब्दों से नहीं होती, बल्कि उन साहित्यकारों से भी होती है जिन्होंने अपनी लेखनी से उस भाषा को जन जन तक पहुंचाया और उसे अमर बना दिया।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसे ही महान रचनाकारों से समृद्ध है। उनमें एक नाम ऐसा है जिसे पूरे देश में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। उनकी रचनाओं में देश प्रेम भी है, संस्कृति भी है, संवेदनाएं भी हैं और समाज को सही दिशा देने का संदेश भी है।
0: और अगर उनके बारे में जानें तो उनका जन्म 3 अगस्त 1800

0: 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। बचपन से ही उन्हें साहित्य में गहरी रुचि थी। उस समय हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा का अधिक प्रचलन था, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और उसे एक नई पहचान दिलाई। और अन्विति, यही कारण है कि हिंदी साहित्य के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: मीनाक्षी, तुम्हें पता है कि उनकी लेखनी से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ये सम्मान केवल उनकी कविताओं के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी गहरी संवेदनाओं के लिए भी था।
0: और अन्विति, उनकी रचनाओं की सूची भी बहुत समृद्ध है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, किसान, द्वापर, नहुष और विष्णुप्रिया जैसी अनेक कृतियां आज भी हिंदी साहित्य की धरोहर मानी जाती है।
1: बिल्कुल, खास बात यह है कि उनकी हर रचना में अपने आप में एक संदेश लेकर आती है। भारत भारती ने देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। उस समय जब देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तब इस कृति ने लोगों के मन में देश प्रेम और आत्मगौरव की भावना को मजबूत किया।
0: और अगर साकेत की बात करें तो यह केवल राम कथा नहीं है, इसमें उन्होंने उर्मिला जैसे उपेक्षित पात्र को केंद्र में रखकर उसके त्याग, धैर्य और भावनाओं को इतनी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया कि पाठकों की सोच ही बदल गई।
1: बिल्कुल, इसी तरह यशोधरा की बात करें तो उन्होंने भगवान बुद्ध की पत्नी के मन की जो पीड़ा है, वो आत्मबल का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया और नारी के प्रति गहरी संवेदनशीलता को चलकाता है। जो
0: सचमुच राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी लेखनी और हिंदी भाषा को गौरव प्रदान किया और साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। उनका जीवन और साहित्य हमें यह प्रेरणा देता है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज का निर्माण की एक सशक्त शक्ति भी है।
1: आइए, इसी बात के साथ कार्यक्रम को विराम देने का समय हो गया मीनाक्षी। तो आपसे फिर मिलने के वादे के साथ में आज्ञा दीजिए अपने सखी अन्विति गोस्वामी और
0: मीनाक्षी स्वर्णकार को। नमस्कार।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान, कहा मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पहला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं। संगीत है राजेश रोशन का।

पापा कहते हैं फिल्म का गीत आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, संगीत था राजेश रोशन का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति उदित नारायण की आवाज़ में, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रंगीला से। गीत को गाया है आशा भोंसले और आदित्य नारायण ने। महबूब के लिखे बोलों को संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम शमण ने। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

आशा भोसले और आदित्य नारायण की आवाजों में आपने सुना रंगीला फिल्म से ये गीत। गीत को लिखा था महबूब ने, संगीत था एआर रहमान का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं रोमी और पवनी पांडे की आवाजों में। फिल्म का नाम है फिलौरी। गीत को लिखा है अन्विता दत्त ने, संगीत है शाश्वत सचदेव का।

रोमी और पवनी पांडे की आवाज़ों में फिल्लौरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अन्विता दत्त के लिखे बोलों को संगीत दिया था शाश्वंत सचदेव ने। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत सोनू निगम की आवाज़ में। उनका साथ दिया है श्रेया घोषाल ने। फिल्म का नाम है आर्यन। गीत को लिखा है आनंद राज आनंद ने, संगीत है आनंद राज आनंद का।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आपने सुना आर्यन फिल्म का गीत। गीत और संगीत था आनंदराज आनंद का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे। शाम 4:58 पर अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: हाँ तो सोनाली जी, हम बात कर रहे थे साड़ियों की और माहेश्वर साड़ी के बारे में हम बताने वाले थे अपने सखियों को। भारत की हस्तकरघा परंपरा विश्व भर में अपनी उत्कृष्ट और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं अनुपम धरोहरों में माहेश्वरी साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका स्थान भी है। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे महेश्वर नगर में निर्मित ये साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक किनारे, मनमोहक पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है।
1: और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई जो राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी।
0: बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और तभी से माहेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। माहेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट माहेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है।
1: और ममता जी, ये साड़ियां ना वजन में बहुत ज्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाले रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियां बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियां सुंदर मेल है।
0: और ये भी बता दें कि महेश्वरी

0: दस्तकारियों के डिजाइन महेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इनमें चटाई, लहरिया, हीरा, ईंट, चमेली, रूपमती, नर्मदा लहर वगैरह वगैरह पारंपरिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं।
1: और रंगों की अगर बात की जाए, रंगों में लाल, हरा, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, फिरोजी, मैरून, दोहरे रंगों का भी आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है। और इसके कई सारे प्रकार है, जैसे नीम सिल्क, शुद्ध सिल्क, सूती माहेश्वरी, टिशू माहेश्वरी और कतान माहेश्वरी, ये प्रसिद्ध है।
0: और चेक्स और स्ट्रिप डिजाइन वाली साड़ियां भी होती हैं। हर तरह की साड़ी का अपना एक अलग सौंदर्य है और उपयोग भी है। और महेश्वर के हजारों बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सोनाली जी, एक बात और है कि इस जो साड़ी की ये परंपरा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो बुनकर होते हैं अपनी कुशलता से जब साड़ी तैयार करते हैं तो उनकी आय का जरिया भी यही होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं और उनकी मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता ही महेश्वरी साड़ी की वास्तविक पहचान है। ये हस्तशिल्प न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती बल्कि ये एक उद्योग के रूप में काम करती है। समाज और देश तक इसकी पहुंच है
1: जी। और महेश्वरी साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इस साड़ी की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता महेश्वर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। GI टैग नकली उत्पादों पर रोक लगाने, बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करने और इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये साड़ियां जो है देश ही नहीं विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। विवाह, फिर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन और औपचारिक अवसरों पर इसे विशेष पसंद किया जाता है। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने भी पारंपरिक डिजाइनों को नए रंगों और शैली के साथ प्रस्तुत कर इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया है।
0: महेश्वरी साड़ी केवल रेशम और सूत का ताना बाना नहीं बल्कि नर्मदा की निर्मल धारा, महेश्वर के किले की भव्यता और बुनकरों के स्वप्नों से बुनी हुई भारतीय संस्कृति की अनुपम चादर है। इसे ओढ़ना, इसे पहनना मानो इतिहास, परंपरा और सौंदर्य को एक साथ आत्मसात करना है।
1: और महेश्वरी साड़ी भारतीय हथकरघा परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें इतिहास की गरिमा, संस्कृति की सुगंध है और बुनकरों के श्रम का अनुपम सौंदर्य समाहित है। और ये साड़ी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ स्वदेशी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी देती है।
0: और हम इस समय प्रेरणा पा रहे हैं ये गाना सुनवाने के लिए। सुनते हैं ये गाना, फिर और बातें करते हैं।

0: भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कराती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पतिदेव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है?
1: उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता जी, पर भूलने के सिवा कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता है?
0: मैं तो झगड़ती नहीं।
1: ऐसा नहीं होता।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं,
1: ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती।
0: हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी, हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था। घर वाले पूछते थे बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ, कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पे तुम, तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये किताब पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे, इस पर हमारे भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा हुआ। और तो और रेडियो सुनने के लिए कि कोई तेज आवाज में सुनना चाहता है, कोई धीमी आवाज में, तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं, ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल झगड़े।
1: ये नहीं, ये घर घर की कहानी होती है। पर भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए पर मनभेद नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की। अब हमने
1: डर गए होंगे ना
0: कि पत्नी से डांट खानी पड़ेगी,
1: क्यों ना आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की बात।
0: तो हमने तो इसलिए बता दिया और आपने भी बता दिया कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा।
1: ये तो बहुत ही तो सामान्य सी बात
0: है। हाँ, लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है, ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास रुक। ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते।
1: एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है ममता जी कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर, मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते हैं लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया। नन्ही सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए, वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए। सोचती हूँ कि अब उस बच्चे की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। इन्हीं बात कितनी, यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी कि वो पापा के पास भी जाना चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है।
0: बिल्कुल।
1: पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं, पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है, तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारी जो श्रोता है इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही। ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए। पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है। और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूंगी क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है और पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहाँ जाए, उसे चाहिए माँ का साथ, पिता का साथ। तो ये जो स्थिति होती है और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता के

0: कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता-पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा।
1: बिल्कुल सही है, और कभी भी टूटना या तोड़ना अच्छा नहीं होता है, तो चीज़ों को टूटने से बचाना चाहिए। चीज़ें भी टूटती हैं तो भी बुरा ही लगता है,
0: जी
1: लेकिन कई बार स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तब उस ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नियमित लगातार घर में हिंसा होने लगती है, शारीरिक हिंसा और पटक फोड़ होने लगता है, बर्तन पटकना, ये सब जब स्थिति जरूरत से आगे बढ़ जाती है, तब फिर ऐसे में अलगाव बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज और है, अब जमाना बदल गया है, अब हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं इन चीजों की, लड़ाई झगड़ों के
0: जी
1: लिए काउंसलिंग होता है, पति पत्नी के अलग काउंसलिंग होती है, और काउंसलर्स मतलब दोनों की बातों को सीक्रेट रखते
0: जी
1: हैं, और इस मामले में आपके पास सर्च करने के लिए जरिया है बहुत सारा, लोगों से पूछ सकते हैं, अखबार है, गूगल है, जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो झगड़ों को अवॉइड करें, चाहे उसके लिए आपको जो करना हो, काउंसलिंग करना हो, सलाह लेना हो, दोस्तों मित्रों या परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए, उनको बीच में लाना चाहिए ताकि आपके झगड़े कम हो, क्योंकि उसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि माता-पिता का घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है। जब इस सुरक्षित जगह पर ही लगातार तनाव और कलह बनी रहे तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जिन घर में रोज झगड़े होते हैं, वहां के बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि बच्चों के सामने लड़ना उनके बचपन को छीनने जैसा है। यदि मतभेद हो भी तो उन्हें बच्चों के सामने लाकर बंद कमरे में शांति से सुलझाना चाहिए। और बच्चों की सिर्फ यही इतनी नहीं होती है खामियां, आगे चलकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, अंतर्मुखी हो जाते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। और सोनाली जी, हम आपको बताएं कि एक कपल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच झगड़े होते थे, तो जब झगड़े शुरू हो तो कमरा बंद कर लेते थे और म्यूजिक चला देते थे, रेडियो या कोई भी गाना, ताकि झगड़ने की आवाज बाहर ना जाए, और फिर जम के झगड़ा करके फिर बाहर आते थे। तो ये भी एक तरीका है झगड़ने
0: यानी
1: का।
0: बच्चों को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हुआ। अंदर तो डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे मम्मी पापा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही उसका अनुसरण करते हैं। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना हो।
1: जब झगड़े की नौबत आए तो एक प्यारा सा गाना गुनगुना लेना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो झगड़े टल तो जाते हैं।
0: हाँ।
1: सुनते हैं ये गाना।

तेरा मेरा साथ रहे, हमारा और श्रोताओं का साथ बना रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर कुछ बातें और करते हैं इस संदर्भ में।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: ममता जी, आपने कहा था ना कि रेडियो धीमा सुनना है या तेज आवाज में सुनना है, इस पर से आपके बीच में लड़ाई होती थी।
0: हमारी दो बहनों की बहुत लड़ाई होती थी।
1: तो ऐसे ही इसी तरह का एक कमेंट हमारी सखी ने लिखा, ये कहती कि रेडियो तेज सुनना, इस पर हमारा आज भी झगड़ा होता है, पर वो तो मस्ती में फिर हम रेडियो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, फिर वही मस्ती वाली बातें। कितनी अच्छी बात है।
0: बिल्कुल। और ये भी होता था कि मतलब होता होगा हमारे श्रोताओं के बीच कि ये रेडियो तो तब उस समय एक ही रेडियो हुआ करता था।
1: हाँ।
0: अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कई कई सेट होते हैं घरों में, आप एक किचन में सुन लो, एक दूसरे कमरे में,
1: मोबाइल से भी सुनते हैं,
0: मोबाइल पे भी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे श्रोता बताते रहते हैं। हमारे तो एक श्रोता है जिन्होंने बताया था कि उनके पास 11 रेडियो सेट है और वो सब बड़े वाले रेडियो सेट। तो अभी शौक भी है, अगर रेडियो से इतना प्यार है तो लोग इस तरह से रेडियो रखते हैं। बहरहाल, बात लड़ाई झगड़े की चल रही थी और तकरार चल रही थी, तो एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका शिवानी जी के उपन्यास में पढ़ी थी मैंने, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही हमारे प्यार की दीवार मजबूत होती है, मतलब जितनी लड़ाई हो उतनी दीवार मजबूत होती है, इसलिए पति से खूब लड़िए थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं ना कि मियां बीबी के झगड़ा दूध में पड़ी मलाई के समान होना चाहिए और मलाई तुरंत हट जानी चाहिए।
1: तो यानी लड़ाई झगड़ा तब होगा जब हम आपस में बातचीत करेंगे, हम अगर हम किसी से हेल्प लेंगे, हम किसी की मदद करेंगे तभी तो बातचीत करेंगे। यानी उस बातचीत के पीछे घर में जो है ना, पति पत्नी एक दूसरे की मदद भी करेंगे, तो फिर थोड़ी बहुत मनमुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, पर ये मनमुटाव बहुत बड़ी लड़ाई में परिवर्तित ना हो जाए और इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक साथी ने हमारे लिखा है कि लड़ाई किसी के भी बीच हो, चाहे वो बच्चे या अभिभावक हो या हमारे पड़ोसी हो, सभी पर बुरा असर पड़ता है। लगातार हो रहे झगड़े का मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे जरूर होते हैं।

0: बड़े झगड़े भी होते हैं तो दीवार खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कई बार संबंधों की बात आती है, संबंधों में दरार जब पैदा होती है तो फिर उन झगड़ों को बचाना ही बेहतर होता है। और वो कहा भी जाता है ना कि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो भावनात्मक रूप से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कई बच्चों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और पढ़ाई ऐसी उनकी चौपट हो जाती है कि वो फिर आगे उनका करियर ही नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: बस हमें सामंजस्य रखना चाहिए रिश्ते के बीच में कि भाई बहुत ज्यादा उसे किसी भी चीज को ना बहुत अधिक हम महत्व देते हैं ना, कि वही वही बात, ताने मारना, बार बार आलोचना करना।
0: वैसे एक बात बताइए, सुना लीजिए, जब आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं, कैसे निपटारा करती हैं?
1: भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, पैर में चप्पल पहनती हूँ, निकल जाती हूँ
0: पति महोदय सुन रहे होंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी देर बाद एक दूसरे से जिसने भी जो भी सोचे कि हम समझौता कर ले, एक चाय का ऑफर, एक कॉफी का ऑफर, कुछ खाने के लिए। चाय पीनी है क्या?
1: मैं
0: कॉफी
1: बना रहा
0: पीनी
1: हूँ,
0: है?
1: तुम पियोगी क्या?
0: हाँ ये वाला। उसके बाद मुझे लगता है कि झगड़े खत्म हो जाते हैं। या कोई
1: बिल्कुल।
0: मीठी सी चीज रखी है घर में, तो मैं तो ये खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए। तो आपको भी खाना है, या फिर चलो यहाँ घूमना चाहते हैं, चलना है क्या तुम्हें मॉर्निंग, मतलब सुबह की सैर के लिए, शाम को घूमने, या चलो पिक्चर देखने चलते
1: अरे
0: हैं?
1: बहुत सारे हैं, उसके तो बहुत सारे की साड़ी

0: ला दी, गिफ्ट ला दी,
1: हाँ
0: चलिए ये साड़ी
1: ये
0: खरीदना
1: तुम्हारे
0: चाहती
1: लिए
0: हो
1: ले
0: क्या?
1: आए
0: हाँ, या फिर क्षमा कर देना सबसे जरूरी बात
1: लेकिन वहां पर ईगो आ जाता है ना,
0: है।
1: बीच में जो अहम अहम नाम
0: ये
1: की दीवार है
0: बहुत
1: वो
0: मोटी दीवार
1: वो
0: होती
1: ऐसा करने नहीं देती है। चाय बनाने तो जा रहे हैं, मन कर रहा है कि पूछ लेते हैं, नहीं नहीं इसने तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोला था, नहीं पूछते हैं, छोड़ो
0: आज
1: हटाओ।
0: तो पूछूंगा ही नहीं, ये आज तो मैं
1: बिल्कुल
0: पूछूंगी ही नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो बात
1: हाँ
0: करने ही नहीं वाली।
1: तो सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है,
0: गाना सुनना
1: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।

0: तो कुछ भी हो जाए, मैं तो बात
1: हाँ,
0: करने ही नहीं वाली।
1: तो सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है?
0: गाना सुनना,
1: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।

0: माफ करिए सोनाली जी, जरा कमेंट्स जो पढ़ रही है ना, धीरे धीरे चुपके चुपके जरा जोर से पढ़ के सुनाइए।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि भैया,
0: अरे मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कुछ कहा ही नहीं।
1: ममता जी
0: ये होता है माफी का असर कि इतनी खिलखिलाहट खिल जाती है
1: और इतने प्यारे अंदाज में कोई बोलेगा ना तो
0: ये दिल आ जाता है। क्या लिखा है?
1: एक हमारे सखी ने कहा है कि जो है ना, ये क्षमा करने का, यानी ये कहने का कि भाई मैं चाय बनाऊं क्या, नहीं आपने जो बोला था तो इसमें ना मन में होता है कि ऐसा बोल दे कि चलो मैं चाय पर मन, वो जो दिल की बात है ना, जुबा तक ही नहीं आती है।
0: हाँ भाई, अहम की दीवार जो होती है ना, तो उस अहम की दीवार को तोड़ना है और जब वो टूट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों की बातों से जितने झगड़े हुए होंगे सुलट के जाएंगे,
1: वो बिल्कुल सुलझने वाले हैं
0: शाम तक चाय के साथ।
1: कोई
0: है ना?
1: तो भी चाय बनाएगा, कोई पकोड़े बनाएगा, है ना।
0: हाँ बिल्कुल, और कोई चटनी भी बनाएगा। अभी चटनी की रेसिपी भी बताएंगे।
1: बहुत सारी रेसिपीज आई है हमारे, बहुत सारी सखियों ने अलग अलग तरह की रेसिपीज लिख कर भेजी जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी अच्छी चटनियां भी बन सकती है। शब्दों की चटनी बहुत बनी है आज।
0: लेकिन क्षमा के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो लिखा वो भी हम एक एक करके पहुंचा देते हैं उन तक। एक हमारी सखी है जो नियमित रूप से लिखती है, इन्होंने लिखा है कि क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा

0: नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, लेकिन हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदाकदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि क्षमा मांगने और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। पर यकीनन क्षमा करने में स्वयं को बहुत हल्कापन हो जाता है और बड़े भारी मानसिक बोझ से हम बरी हो जाते हैं। हमने इसको खुद आजमाया है। क्या बात है।
0: कई बार क्षमा मांगकर दुख भी होता है। अगर गलत बात के लिए क्षमा मांगनी पड़े, जैसे कई बार जबरदस्ती आपको माफी मांगनी पड़
1: दबाव
0: जाती
1: के
0: है
1: खातिर
0: दबाव के चलते,
1: जी
0: परिवार में, समाज में, दफ्तर में या कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थल पर आपको जबरदस्ती सॉरी कहना पड़ता है, तो वहां आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट
1: जी
0: होता है, आत्मसम्मान
1: वो
0: वहां
1: टूट
0: जा
1: जाता
0: जाता
1: है
0: है, हाँ, चोटिल होता है।
1: जी।
0: तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के दबाव में आकर माफी ना
1: क्षमा
0: मांगे।
1: मांगे जी।
0: बिल्कुल।
1: वैसे एक साथी ने लिखा है कि पहले मेरा स्वभाव था गलती चाहे हो ना हो मैं क्षमा मांग के बात को खत्म कर देना ही पसंद करती थी, पर जब देखा कि इसका भी गलत ही लोग फायदा उठा रहे हैं तब मैंने कुछ अपने को रिजर्व करा और थोड़ा सा चुप रहकर निग्लेक्ट करना मुझे बेहतर ऑप्शन लगा। ये भी ऑप्शन अच्छा है कि भाई आप थोड़ी सी दूरी बना ले तो फिर इन सब समस्याओं से थोड़ा बहुत छुटकारा तो हम पा सकते हैं।
0: अब क्षमा के जब हम टिप्पणियां पढ़ रहे हैं तो एक टिप्पणी हमें मिल गई है जो झगड़े वाली, जो क्षमा के साथ मैच हो रही है। इन्होंने लिखा है, हमारी सखी है, हमारा और हमारे घर में झगड़ा होता है कि साहब जी को टीवी देखना पसंद है और मुझे रेडियो सुनना। तो मैं कमरे में जब रेडियो चलाती हूँ और वो टीवी चलाते हैं, मैं तो मैं दूसरे रूम में फोन लेकर चली जाती हूँ। उनका कहना है कि रहो भी कमरे में, फिर भी मैं टीवी तो चलने देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ और अपना रेडियो चलता रहता है। हम लोग दोनों रेडियो सुनते हैं और वो टीवी देखते हैं।
1: आप
0: क्या
1: कान में
0: बात है।
1: हेडफोन लगा लीजिए ना
0: हाँ, वो भी एक
1: ये
0: तरीका है।
1: ऑप्शन अच्छा है।
0: हाँ, और ये भी तरीका है कि अपनी मतलब कि रेडियो सुनवा देती हैं जबरदस्ती मतलब चित्र दिख रहा है और रेडियो सुना जा रहा है, ये भी एक तरीका है। और
1: और एक साथी ने लिखा है क्षमा बड़न को चाहिए चोटन को उत्पात, क्षमा बड़प्पन की निशानी है, क्षमाशीलता कमजोरों का नहीं बलवानों का गुण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि आत्मा को शुद्ध करती है और रिश्तों में जहर घोलने वाली नकारात्मकता को समाप्त करती है।
0: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और
1: और
0: भी तो
1: जी
0: कुछ
1: एक
0: टिप्पणियां
1: साथी
0: हैं।
1: लिखते हैं कि क्षमा धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, किंतु हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और उसका दर्द भी हम यदाकदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है, क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
0: क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि क्षमा मांगने में और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। दरअसल क्षमा करने वाला ज्यादा बड़ा कहलाता है क्षमा मांगने वाले से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां माफी के लायक वो काम नहीं होता है, तो वहां पर जिसने माफ किया वो बड़ा हो जाता है।
1: पर एक बात ये भी है ममता जी कि जो रिश्ता होता है ना कांच की तरह होता है कि अगर कांच चटक जाए तो फिर उसे जुड़ता नहीं, इस रिश्ते में दरार हमेशा के लिए रहती है, बस कोशिश हो कि उसे टूटने से बिखरने से बचा दिया जाए। एक साथी कहते हैं कि सिर्फ दो अक्षरों का शब्द है लेकिन उस दो अक्षरों के शब्द में अपार शक्ति है। क्षमा जिसे विरास से भूषणम कहा जाता है, किसी से क्षमा मांगना ये अपनी निर्बलता नहीं है, क्षमा स्वतंत्र रूप से उपचार करने वाली सुख और शांति के द्वार खोलने वाली कुंजी है जो सबसे बड़ा उपहार है।
0: क्या बात है। अब सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हुए सुनते हैं ये गाना।

0: सोनाली जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो माफी माफी मांगे, और वो सोचते हैं पहले हम बोले, पर किसी को बढ़कर बात कर तो लेनी चाहिए।
1: यही तो
0: और
1: बात आपने कही थी ममता जी, कि उसके बीच में अहंकार की मोटी सी दीवार होती है, पर बात कर वो दीवार को तोड़ देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक पल आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन जैसे ही झगड़े खत्म होते एकदम नॉर्मल सा हो जाता है माहौल, तो इसलिए वो नॉर्मल कर लेने में ही भलाई है।
1: सभी की और
0: अगर
1: खासकर बच्चों की भलाई
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता के कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्कशन है प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा है, और जो विषय आपने चुना है बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है।
1: और एक
0: और
1: साथी ने लिखा है कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई है और अब
0: अच्छा,
1: हम चाय पीने वाले
0: क्या बात है
1: हैं।
0: भाई, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनाली, हमारे हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे और देर तक असर करे। तो अगर किसी श्रोता ने ये लिखा है तो हम सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप में से किसी से झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो बस एक प्याला चाय बनाइए एक दूसरे के लिए,
1: मिटा
0: और
1: दीजिए
0: हाँ,
1: दूरी।
0: माफी मांगिए और
1: जी
0: खत्म कर दीजिए झगड़ा।
1: जी
0: और
1: एक अब चटनी की ओर बढ़े,
0: हाँ, चटनी भी बना सकते हैं।
1: अमरूद की चटनी। इसके लिए एक मध्यम आकार का अमरूद है पका हुआ, 1 कप धनिया, 2-3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सफेद नमक, 1 नींबू का रस और 2-3 चम्मच पानी। चटनी बनाने की विधि, अमरूद को अच्छे से धोकर पोंछ ले, इसके आगे पीछे का हिस्सा काट दे, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करे और इसके कड़े बीज बाहर निकाल कर रख दे। मिक्सी के जार में कटे हुए अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाले। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक और नींबू का रस मिलाए और जरूरत के अनुसार 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे दरदरा या अपनी पसंद अनुसार पीस ले, और आपकी स्वादिष्ट और चटपटी अमरूद की चटनी तैयार है। इसे

0: पराठे या भोजन के साथ परोसे।
1: क्या बात है भाई, श्रोता हमारे ये आजमाएंगे। अब एक चटनी की रेसिपी बहुत लंबी सी लिखी है तो कहने को चटनी जो बहुत छोटे छोटी मात्रा में परोसी जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी है। देखते हैं क्या लिखा है। तिल और सूखे धने की चटनी। ये चटनी मेरी नानी बनाया करती थी। सामग्री इस तरह से है कि सफेद तिल आधा कप, साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4 से 5, लहसुन की कलियां और जीरा 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता और हींग 1 चुटकी, नमक स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि। एक भारी कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर हल्का चटकने तक भून लें। इसे एक प्लेट में निकाल लें। उसी कढ़ाई में साबुत धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। इन्हें धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू न आने लगे। इन्हें भी तिल वाली प्लेट में निकाल लें। अब लहसुन को सूखा भून लें। सारी सामग्री को ठंडा होने दें। फिर इसमें नमक, हींग डालकर दरदरा पीस लें। स्वादिष्ट चटनी तैयार है। ये काफी समय तक खराब नहीं होती और इसे आप बाजरे या मक्के की रोटी, थेपला या गरम पराठे के साथ खा सकते हैं।
0: एक सखी ने करौंदे की चटनी लिखकर भेजी है। ये करौंदे को काटकर उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें लहसुन, हरी मिर्च डालकर पीस ले, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल मिला दे, स्वादिष्ट चटनी तैयार होती है। और कदम्ब को काटकर सूखी भुनी लाल मिर्च, भुना जीरा, धनिया, काला नमक और थोड़ा गुड़ के साथ पीस ले। इसमें लहसुन नहीं डालते, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दें। ये खट्टी मीठी चटनी रोटी और पराठे के साथ अब बहुत अच्छी लगती है। करौंदे की चटनी में आप धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पर बरसात के दिनों में हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं। करौंदा लहसुन मिर्च के साथ थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है। ज्यादातर लोग इसे पकाए हुए भुट्टे के साथ खाते हैं। और एक ने लिखा है कि चटनी बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। चटनी खाने में आजकल प्रमुख है। चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है। टमाटर की, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे चटनी पुदीने की बनती है। धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, टमाटर, लहसुन सबको मिलाकर बारीक काटकर मिक्सी में पीस लिए, चटनी तैयार होगी। गरम गरम पराठे या रोटी के साथ खाओ तो बहुत मजा आएगा। सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी सब्जी से बोर हो जाओ, घर में चटनी बना लो, मजा आ जाएगा।
1: क्या बात है। तो आज सोनाली जी, जो आज ये तकरार वाली चाय बनेगी उसके साथ थोड़े पकौड़े और ये चटनी।
0: चटनी है ना, क्या बात। जो ये ऐसी तकरार बार बार होनी चाहिए
1: कि उसके बाद चाय पकौड़े मिले।
0: मिल जाए।
1: तो चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं।
2: आपको हमारी पसंद लौट आई।

0: श्रोताओं, आप हमें बता सकते हैं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा, आपको एफएम गोल्ड चैनल कैसा लगता है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर वही है 9868868753, इस पर आप हमें बता सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com, इस पर भी आप हमें मेल भेज सकते हैं। और जिन श्रोताओं के फरमाइश मैंने पूरी की, उम्मीद है कि आप इन
1: ठीक है, जल्दी करो, जल्दी।

0: भाई इस प्रोग्राम से जाने का मन कभी नहीं करता है, और लगता है कि प्रोग्राम का समय कम पड़ गया है,
1: मुझे लगता है
0: और
1: श्रोताओं का भी यही हाल होगा, है ना?
0: उन्हीं की बात पे कह रही हूँ
1: जी
0: क्योंकि वही लिख रहे हैं कि

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था।
0: मतलब बहुत ही लेट आया।
1: बहुत ही लेट आया। तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहां जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी कब क्यों और कहां। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता था।
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण है, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है।
0: हाँ।
1: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं। बहुत लंबे समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान में,
0: अब पाकिस्तान
1: हाँ, में हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो।
0: नहीं,
1: मुझे ऐसा लगता
0: था। ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा,
1: जैसा वो, हाँ, जैसी जिसकी नजर। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून बनाते थे।
0: ओके।
1: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये

0: कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं।
1: तो उस दौर के कौन कौन से नामों से आप परिचित हुए?
0: अब बहुत सारे असल में। तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे।
1: पहले ही बॉक्स में नाम आता था,
0: हाँ, पहले बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रेक भी लिखते हैं। फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं, रिप कर्बी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं, बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रख लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी 4 मिलेगी 5 मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए। क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूं।
1: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
0: नहीं, अच्छी चीज ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती। शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं अभी के भी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में एक हैं। तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूं, तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे। तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था, जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहूंगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूं और मैं ये भेज सकता हूं छपने के लिए। अच्छा। वो कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
1: लिफाफा भेजता था,
0: वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था
1: जी।
0: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, तो
1: कुछ
0: भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए। मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ता उम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में। अच्छा। और सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी। मैंने ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्रॉइंग्स बेहतर करता हूं लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊंगा।

0: हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ अब, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून, दो तीन बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में। मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो चंडीगढ़ गए पहले ही दिन, पहले ही कार्टून गए और 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे। उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था,
1: और वो भी भिलाई में।
0: भिलाई में तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपए चाहे जितने भी कार्टून, तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा, क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। 100 रुपए में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे।
1: यस
0: हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे। अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहां भागना पड़ता नहीं करना पड़ता था। मुझे याद है 56 रुपए का सेट आता था,
1: हाँ,
0: तो दो सेट में,
1: और वो बड़ा महंगा लगता था।
0: 56 रुपए बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपए मिल रहा था मैंने, तो मैं 2 सेट खरीद सकता था मैं। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
1: क्या बात है, लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से देने लगे।
0: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा, मुझे मेरी कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए,
1: अपनी बड़ी। हाँ,
0: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की। मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे।
1: कितने साल चलाई
0: वो? हमने चलाई करीब 4 साल।
1: अच्छा, और किताबें सब वापस आई सही सलामत?
0: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
1: अलग कहानी,
0: अलग कहानियां हैं वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज है।
1: बहुत सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई, ऐसा कोई मौका आया?
0: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी, लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है। और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बालहंस में आने लग गया, उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके। तो मजे की बात ये थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपए भी महीने के बना ले रहा है,
1: बहुत ज्यादा रकम,
0: बहुत बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही ठीक ठाक, और आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा।
1: अच्छा, फिर
0: मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप रे बाप,
0: हाँ,
1: मतलब ये तो बम गिर गया,
0: तबाह हो गया मैं।
1: अच्छा,
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ नहीं
1: आगे की कहानी सुनेंगे। आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे।
0: चलिए।

0: नवी में आप फेल हो गए?
1: नवी में मैं फेल हो गया।
0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है।
0: हाँ, कि फेल हो जाऊंगा।
1: फेल हो जाऊंगा
0: मतलब पढ़े नहीं थे कुछ?
1: नहीं, मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
0: वैसे नवी होता भी फिसलदार मैदानी है।
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा दसवीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया।
0: नहीं, और ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट गया,
1: छूट गया,
0: होश में आ जाओ।
1: नहीं, वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पर आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक हाफ पेंट था, फिर फुल पेंट आया, तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून्स छप रहे हैं। तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास नाइन्थ का एक लड़का है जिसका हर महीने
0: कहीं
1: ना कहीं वो छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है। हम ही हमें
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पर कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो नवी में मैं फेल हुआ, उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो। क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे एक साल आगे चले गए, अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो ये लगता है एक साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था, मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे? सबको पता है आप नाइन्थ में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप दसवीं नहीं गए, आप वापस नाइन्थ रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा? एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका। उसमें बच्चे की गलती है नहीं है,
0: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता। वो जो
1: स्टिग्मा
0: वाली बात
1: है ना, तो स्टिग्मा आ जाता है वो। तो स्टिग्मा तो आ गया था, और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो। तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है, अभी तक आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं, पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं,
0: नजरें कैसे मिलाएंगे?
1: नजरें कैसे मिलाएंगे? उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें। तो ये जो पूरा

0: एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है उससे मैं गुजरा पूरे एक साल।
1: पूरे एक साल
0: देखिए बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं
1: बिल्कुल
0: वो फेलियर को, और वो फेलियर ताजा
1: ही। घर वालों का एटीट्यूड क्या था?
0: कुछ खास ऐसा मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है, तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
1: क्या काम था वो?
0: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई वो मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहां सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे।
1: अच्छा, हाँ, ये सब चल रहा था।
0: और ये सब चल रहा था, उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया। वो भी मेरे ख्याल से 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर, तो वो शुरू किया मैंने। मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पर लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी वो खत्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि
1: फेल्योर
0: बच्चा फेल होता है
1: उस बच्चे तो के ऊपर
0: अपने अपने आप में वो एक मौत से गुजर रहा होता है।
1: Correct.
0: उसके ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: शो में लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो हम लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नाइन्थ में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि नाइन्थ में फेल होते हैं या नहीं होते हैं। फिर पता चला कि होते हैं। हाँ, जहां वो कहानी बेस्ड है वहां तो होते हैं। तो फिर उस चीज को लेके बहुत सारी चीजें जो मैंने झेली थी, बहुत सारी चीजें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहां मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं। एक दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथार्सिस नहीं हुई लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथार्सिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथार्सिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह पर निकल जाते हैं।

0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
1: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहां उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद।
0: अच्छा,
1: सेकंड ईयर।
0: ये एक तरह की राहत,
1: एक तरीके की हाँ राहत थी।
0: हाँ।
1: तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो घबराहट नहीं थी।
0: हाँ।
1: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में।
0: हाँ।
1: ये सब मेरे से छोटे थे मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे सेकंड ईयर में, इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे। तो केमिस्ट्री टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीजें। तो 9th और 10th यूं करके निकल गए, मतलब चुटकी बजाते 9th और 10th निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
0: अच्छा।
1: हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो रही थी उसी शहर में।
0: क्या बात।
1: हाँ, तो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे जितना झेल सकते थे आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-2 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का।
0: तो एक नए सिरे से बनने की तैयारी थी
1: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
0: बिल्कुल। ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया।
1: सुपर कमांडो 2 की पहली किताब। हाँ, प्रतिशोध की ज्वाला थी वो। और वो सब मेरे लिए काम कर गई बेसिकली।
0: तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ एक गाना सुनते हैं
1: जी। बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा,
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी।
0: धीरे धीरे धीरे धीरे करके,
1: और मेरी पीढ़ी मेरे ख्याल से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूं, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूं तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा, मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज को खुद करके ना देखूं, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीजें। कार्टून्स छप रहे थे लेकिन मुझे मजा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में दो बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है? तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे। तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था कि मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने है, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हैं वो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिसेज जाता था, कार्टून्स देखे आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से।
0: अरे,
1: तो 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था। इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था, क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिसेज होते थे, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कहीं ना कहीं छप जाता था।
0: वाह।
1: और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था। मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहां मैं बड़ा हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहां से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेकर कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्रांड की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा इतना पेशेंस मन में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ, मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूं, लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है, मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। जो भी मैं कुछ करता हूं उससे अटैच भी हूं और डिटैच भी हूं। अटैच हूं जब तक मैं उसको बना रहा हूं, डिटैच हूं द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूं तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूं। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, वो सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में।

0: तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ, तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहां जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूंगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊंगा। तब तो मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है, तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहां खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्रॉइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके,
1: अरे
0: वो
1: बाप
0: कहीं
1: रे।
0: मेरे पास रखा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं, मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे, तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने, भारत में एनिमेशन का कोई स्कोप ही नहीं
1: सिस्टमेटिक
0: था,
1: मामला नहीं
0: स्कोप
1: था।
0: ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास 9th में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी, उसका नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में, मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी, और जो कोर्सेस थे वो बहुत महंगे थे, तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेज। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा, तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम आताबिरा है, मतलब वहां आप आलोक शर्मा आताबिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गाँव था वो। तो उसके लिए उस गाँव से निकलना बहुत जरूरी था। उस बीच में गौथम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था, तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा, उन्होंने बोला ये सब कचरा है, मेरे पिछले 6, 7, 8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम खां था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोल रहा है कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहां मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ, और सैंपल कोई मांगे मुझसे मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा,
1: बिल्कुल।
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया, बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया, और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह
0: हाँ, तो
1: वाह।
0: पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी, मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडर वर्स वगैरह आ गया है। तो वहां से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई, लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है, मैं लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं उस जगह, तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार
1: मौजूद
0: स्टूडियो में
1: थे।
0: थे, तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है, तो उनको कहानियां पसंद आने लगी, उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पर हम लोग ड्रॉइंग करें। वहां से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ, तब तक मैं
1: मार्वल
0: लिखता
1: के
0: नहीं था,
1: साथ।
0: अब गौथम कॉमिक्स था, गौथम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें, तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला, लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज से, ड्राइंग से, क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना वो पूरा रस
1: निकल जाता है।
0: निकल जाता है, अब वो काम बन जाता है,
1: यस
0: कि आप बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है, तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी जिसमें मैंने 6, 7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मांगा जिनको बोलते हैं, मांगा मुझे बहुत पसंद आने लगी, तो मैंने चाणक्य पे एक मांगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मांगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया, मैं एक रेडियो स्टेशन गया, FM रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया, और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया, मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ ऑडिशन देना चाहता हूँ, उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया, मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था, मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को

0: मस्त हो जाता हूं कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर, मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरी जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहां मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था, कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा। फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इंफॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
0: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई मेरे के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं,
0: लिफ्ट करा दे
1: अदनान समी की आवाज।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और वापसी के लिए चर्चा शुरू कर दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में और संशोधन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार और फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और

0: प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज ईशानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्रीरामराज, अश्मिता चालिहा और श्रेयांसी वलुशेट्टी ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ज और FM 101.6 मेगाहर्ज पर। संध्या के 5:05 हुए हैं और ये समय है हमारी युवा श्रोताओं के लिए उनके कार्यक्रम युववाणी का। आज इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं दिव्या सारस्वत और प्रियंका सोनी।

0: अरे सुना आपने, सेल लगी है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी कीजिए नहीं तो मौका हाथ से नहीं निकल जाए। सच सच बताइए, कहीं आप भी तो ऐसी बातें सुनते ही सबसे पहले अपना फोन उठाकर शॉपिंग ऐप तो नहीं खोल लेते कि देखो तो सही कहाँ लगी है सेल, या फिर सामने वाले से तुरंत लिंक मांगने लगते हैं तो जरा रुकिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ प्रियंका सोनी।
1: और मैं हूँ आपकी युवा साथी दिव्या। प्रियंका, मुझे तो यकीन है कि तुम्हारी बातें सुनकर कुछ लोगों ने तो मेरी तरह शॉपिंग एप्स खोल भी लिया होंगे।
0: और कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे होंगे कि ऑफर था कहाँ।
1: बिल्कुल, क्योंकि कई बार तो मैं भी ऐसा ही कर लेती हूँ, लेकिन एक बात है, लिमिटेड टाइम ऑफर सुनते ही कई बार दिमाग से पहले हमारी उंगलियाँ बाय नाउ पर या ऐड टू कार्ट पर पहुँच जाती
0: है। और मजेदार बात यह है कि कई बार हमें उस चीज की जरूरत भी नहीं होती, बस 70% ऑफ, आज आखिरी मौका या ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, ये सब चीजें लिखा देख कर ऐसा लगता है कि अभी नहीं लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
1: और कई बार तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि पार्सल घर पहुंच जाता है फिर भी याद नहीं रहता कि आखिर मैंने मंगवाया क्या था।
0: फिर घर वाले पूछते हैं ये क्या है, तो जवाब मिलता है कि ऑफर अच्छा था इसीलिए ले लिया।
1: लेकिन कभी कभी ये छोटी छोटी खरीदारी हमारे महीने के आखिर में बड़ा हिसाब बना देती है, हमारे बजट को बदल के रख देती है।
0: क्योंकि ऐसे ही फ्लैश सेल देखकर आप शॉपिंग करना शुरू कर देंगे तो फिर महीने के आखिर में आपका वॉलेट भी फ्लैश होने लगेगा। और फिर वही डायलॉग, इस महीने में तो पैसे कहाँ गए। इसीलिए बजट बनाना दोस्तों, खर्चों का हिसाब रखना और थोड़ी थोड़ी बचत करना, ये आदतें छोटी जरूर लगती है लेकिन भविष्य में बहुत काम आती है।
1: और इसी समझ को कहते हैं साथियों वित्तीय साक्षरता।
0: हाँ।
1: यानी अपने पैसों को इस तरह संभालना कि आज की हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं और कल की चिंता भी ना सताएं।
0: हो सकता है दोस्तों आप में से शायद कुछ युवा सोचते होंगे कि अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी की हमें क्या जरूरत। लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और युवाओं के लिए तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि पहले स्कॉलरशिप हो या पॉकेट मनी हो, पार्ट टाइम इनकम हो या पहली सैलरी, अगर शुरुआत से ही सही आदत बन जाए तो आगे का सफर भी आसान हो जाता है।
1: और साथियों बचत का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी हर छोटी खुशी को छोड़ दिया जाए, बल्कि जरूरत और चाहत के बीच का जो फर्क है उसे समझना ही काफी होगा। याद रखें या याद करें तो देखते हैं कि बचपन में जब कहीं हमें 100 रुपए मिलते थे किसी से, तो उनमें से 80 रुपए तो हम ऐसे हवा में उड़ा देते थे
0: और बाकी के 20 रुपए इतना संभाल कर रखते थे कि जैसे कोई इमरजेंसी फंड हो।
1: और इमरजेंसी फंड क्या होती थी, वही अगले दिन की स्कूल की कैंटीन।
0: और आज भी ऐसा ही है दिव्या, फर्क बस इतना है कि पहले होती थी पॉकेट मनी, अब उसकी जगह आ गया है UPI।
1: और ट्रांजेक्शन तो इतनी इजी बना दिए हैं, लेकिन देखो पहले जब जेब खाली होती थी तो पता चलता था कि अभी भाई 20 रुपए बचे हैं, 40 रुपए बचे हैं, लेकिन अब जब अकाउंट खाली होता है तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता और पता हमें 2 दिन के बाद चलता है, और कब, जब हमें अगला पेमेंट करना होता है।
0: देखो ना, क्योंकि आजकल

0: 49 rupees, 99 rupees, 149 पेमेंट ही ऐसे हो गए हैं ना कि लगता है कि अरे इतना सही तो है,
1: और वही इतना सा बार बार पूरे महीने में जोड़े तो एक अच्छी खासी रकम निकल जाती है प्रियंका. इसीलिए खर्च कितना किया उससे ज्यादा जरूरी चीज है हमने खर्च कहाँ किया.
0: और वो एक दोस्त तो लगभग सभी का होता है, दोस्तों आपका भी हो गई, जिसकी आदत होती है ये बोलना कि अभी पेमेंट कर दो मैं बस 5 मिनट में भेजता हूँ वापस.
1: भाई प्रियंका वो 5 मिनट तो बस पूछो ही मत. कभी कभी तो वो अगले महीने में पूरे होते हैं और फिर याद दिलाओ तो जवाब आता है अरे यार याद ही नहीं रहा.
0: इसीलिए पैसे चाहे दोस्ती में हो या परिवार में हिसाब साफ होना चाहिए ताकि रिश्ते भी अच्छे रहें और गलत फहमियां भी ना हो.
1: और एक चीज मैंने काफी बार नोटिस की है साथियों, शायद आपने भी की होगी, कई बार हम जब ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर पे सॉरी ऐप पे लिखा रहता है बस ₹50 जोड़ें और फ्री डिलीवरी पाएं, और उसी चक्कर में एक्स्ट्रा फूड होता है ऑर्डर कर देते हैं, यानी फूड भी वेस्ट और पैसा भी वेस्ट.
0: और इसीलिए हर ऑफर फायदे का हो ये जरूरी नहीं है, और फाइनेंशियल लिटरेसी हमको यही सिखाती है.
1: तो खर्च करने से पहले एक सवाल हमेशा खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या सिर्फ अभी के लिए अच्छा लग रहा है. अगर इस सवाल का ईमानदारी से आपको जवाब मिल जाए तो यकीन मानिए आधे से ज्यादा फिजूल खर्च अपने आप कम हो जाएंगे.
0: आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसा सोचते होंगे हर महीने कि इस बार तो बचत पक्की है,
1: और फिर सैलरी आते ही धीरे धीरे पता नहीं पैसे कहाँ चले गए. जबकि अगर शुरुआत में थोड़ा थोड़ा बचाने की आदत हो तो चीजें आसान हो सकती है. बैंक्स भी सेविंग अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट, SIP जैसी कई सुविधाएं देती है, लेकिन हमें कोई भी निवेश करने से पहले इसके बारे में सही और सटीक जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है.
0: सिर्फ इसीलिए पैसे नहीं खर्च करने चाहिए कि किसी दोस्त या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कह दिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है.
1: और अगर बात करें सोशल मीडिया की प्रियंका, तो तुमने भी कई बार देखे होंगे वो वीडियो जिनको खोलने से पहले सामने लिखा आता है कि बस 30 दिनों में पैसा डबल.
0: अब देखो दिव्या, अगर इतना ही आसान होता तो वो वीडियो बनाने वाला खुद करोड़पति नहीं होता.
1: इसीलिए दोस्तों किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानकारी, जोखिम और भरोसेमंद स्रोत जरूर देखिए.
0: आजकल देखो डिजिटल पेमेंट ने जिंदगी जरूर आसान बना दी है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है.
1: कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, UPI पिन या बैंक की जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए.
0: हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, UPI पिन और बैंक की जानकारी किसी से शेयर ना करें. और अगर कोई कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ पहले QR कोड स्कैन कर लीजिए, या फिर कोई कहे कि सर वो OTP तो जरा बता दीजिए, तो ध्यान रखिए दोस्तों थोड़ा रुकिए और सोचिए,
1: क्योंकि पैसे लेने के लिए QR कोड स्कैन करने की कभी जरूरत होती ही नहीं. कई बार लोग जल्दबाजी में यही गलती कर बैठते हैं. और याद रखिए बैंक कभी भी फोन करके आपसे OTP या पिन नहीं पूछता.
0: इसलिए जितने स्मार्ट हम हैं उतना स्मार्ट, जितने स्मार्ट हमारा फोन है उतना ही स्मार्ट हमें भी बनना पड़ेगा. तो आज एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, अपने महीने भर का खर्च लिखकर रखिए, शायद आपको खुद पता चल जाए कि सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं.
1: और हाँ, अगर आप प्लानिंग से चलेंगे तो फायदा आपको ही है. आगे चाहे पढ़ाई करनी हो, कोई नया कोर्स करना हो, या छोटा सा बिजनेस शुरू करना हो, या परिवार के किसी जरूरत में मदद करनी हो, आर्थिक समझ हमेशा काम ही आती है.
0: ऑफर देखकर खुश होना अच्छा है, लेकिन उसके पीछे पूरा अकाउंट बैलेंस खाली कर देना, ये थोड़ी खुशी ज्यादा हो जाती है.
1: क्योंकि अगर कमाना एक कला है साथियों, तो उसे सही तरीके से संभालना और खर्च करना भी एक हुनर है.
0: इसीलिए कमाइए, बचाइए, समझदारी से खर्च कीजिए और सीखते रहिए. आज ही पैसों के साथ दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि बड़ी काम की चीज है ये पैसा.
2: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

0: अब वक्त है दोस्तों आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का, जहां रोज हम आपसे पूछते हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर्स से जुड़े दो प्रश्न। तो आज आपका पहला प्रश्न है,
1: गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज ने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है।
0: और आपका दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ये थे दोस्तों आपके लिए दोनों प्रश्न, जिनके जवाब हम कार्यक्रम के अंत में देंगे। अब रुकते हैं कुछ संदेश के लिए।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
6: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
5: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
6: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2,000 से 5,000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
5: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
6: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
10: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
9: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
10: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
9: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
10: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
9: बुक कराइए

0: पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: पता है दिव्या, आजकल मुझे एक अलग ही शौक लगा है। मैं
3: क्या?
2: भारत के अलग अलग राज्यों के बारे में पढ़ रही हूँ, और कई बार ऐसा लगता है कि हम घूमने की जगहों के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन उन जगहों के लोगों के बारे में कम जानते हैं जिन्होंने उन जगहों के लिए इतना कुछ किया।
3: बिल्कुल पते की बात कही है तुमने प्रियंका। किसी नई जगह पर जाओ तो लोग कहते हैं वहाँ ये देखना, वहाँ वो खाना, पर वहाँ का इतिहास वो बहुत कम लोग बताते हैं।
2: और अभी कल ही मैं असम के बारे में पढ़ रही थी, और इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आ रहा था, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई।
3: अच्छा, मैंने भी ये नाम बहुत सुना है, लेकिन एक बात बताओ प्रियंका, इनके नाम के आगे लोकप्रिय क्यों लगाया जाता है?
2: मुझे भी पहले यही लगा था कि शायद ये उनके नाम का ही हिस्सा होगा, लेकिन बाद में पता चला पढ़ने पर कि लोगों ने उन्हें प्यार और सम्मान से ये नाम दिया है।
3: मतलब लोगों ने ही उन्हें लोकप्रिय बना दिया। वैसे आजकल तो पॉपुलैरिटी देखें तो सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स देखकर ही डिसाइड होती है।
2: हाँ, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो जो लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं वो कभी कभी नीचे भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लोकप्रियता किसी ट्रेंड से नहीं, उनके काम से बनती है।
3: Exactly.
2: और गोपीनाथ बोरदोलोई उन्हीं में से एक थे।
3: दोस्तों, आज हम उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद कर रहे हैं। उनका निधन आज ही के दिन 5 अगस्त 1950 को हुआ था।
2: वे स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ादी के बाद असम के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उस समय असम के विकास, शिक्षा और लोगों के हितों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किए।
3: ये उस दौर की बात है जब देश नया नया आज़ाद हुआ था। बहुत सी चुनौतियां उनके सामने थी, लेकिन ऐसे समय में एक राज्य को सही दिशा देना कितना मुश्किल होता था।
2: लेकिन उन्होंने कितने धैर्य और दूरदर्शिता के साथ काम किया, जिस कारण आज भी असम में उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है।
3: और मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
2: मुझे एक बात हमेशा अच्छी लगती है दिव्या, किसी इंसान की असली पहचान उनके पद से नहीं होती, बल्कि उसके जाने के बाद लोग उसे किस तरह याद रखते हैं इससे होती है।
3: बिल्कुल साथियों, क्योंकि कुर्सी पर तो बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बैठना, लोगों के दिलों में राज करना हर किसी के बस की
2: बात
3: नहीं।
2: और यही तो वजह है कि आज इतने साल बाद भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, देखो
3: वो भी बीकानेर में रहकर। देखो प्रियंका, बचपन में इतिहास पढ़ते समय सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता था?
2: मुझे तो तारीखें याद रखना।
3: मेरे साथ भी यही होता था और शायद हमारे सभी युवा श्रोताओं के साथ भी यही होता था, एग्जाम खत्म और तारीखें भी छुट्टी पर। लेकिन देखो, कुछ तारीखें स्वतः ही याद रह जाती है, जैसे आज की। अगर उन तारीखों के पीछे की कहानी को समझ लिया जाए तो उन्हें याद रखना उतना मुश्किल नहीं होता।
2: क्योंकि इतिहास सिर्फ क्या हुआ ये नहीं बताता, ये भी बताता है कि क्यों हुआ और उससे हमें क्या सीखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि हर युवा को अपने राज्य के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों के बारे में भी जानना चाहिए।
3: इससे हमें ये भी समझ आता है साथियों कि भारत की विविधता सिर्फ भाषा या खान पान में ही नहीं, बल्कि उन लोगों में भी है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में समाज के लिए क्या क्या काम किए हैं।
2: और यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है, अलग अलग राज्य, अलग अलग संस्कृतियाँ, लेकिन देश के लिए योगदान देने वाले लोगों की सोच एक जैसी, समाज और देश का विकास।
3: इसीलिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और अपने युवा साथियों से भी यही कहेंगे कि इतिहास को सिर्फ परीक्षा के लिए मत पढ़िए साथियों, प्रेरणा के लिए भी पढ़िए,
2: क्योंकि हो सकता है किसी महान व्यक्ति की एक छोटी सी कहानी आपके जीवन की सोच बदल दे।
3: इसी संदेश के साथ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। एक बात और ध्यान रखिएगा साथियों, इंसान के

0: पहचान हमेशा उसके पद से नहीं होती। दुनिया में पहचान बनाने के वैसे तो कई तरीके हैं, पद पुरस्कार सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे खूबसूरत तरीका है लोगों के दिलों में जगह बनाने का।
1: क्योंकि बड़े नाम वाला बनने से पहले बहुत जरूरी है बड़े दिल वाला बनना।

क्योंकि दोस्तों जो सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी ध्यान रखता है उसी को कहते हैं बड़े दिल वाला। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी बहुत काम आते हैं। और दोस्तों इसीलिए आप इतिहास भी पढ़ते रहिए ताकि आपको भी जानकारी मिले कि ये सब चीज़ें कैसे हुई, लोगों ने कैसे काम किया, कैसे देश को आज़ाद कराने के लिए काम किया। तो गोपीनाथ बोरदोलोई ऐसे ही एक इंसान थे, इनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का युववाणी में। साथियों, अभी तक तो हमने कई दिलचस्प विषय पर बातें की, लेकिन अब जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो हम सभी युवाओं की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
1: दरअसल दोस्तों, जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो मन में यही आता है कि काश हम भी उस मुकाम तक पहुँच सकें, लेकिन उस सफलता के पीछे जो रोज का संघर्ष और नियम होते हैं, अक्सर हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता।
0: और वो नियम, वो प्रतिबद्धता कुछ और नहीं बल्कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन ही तो है।
1: हाँ।
0: अक्सर युवा सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब बहुत सख्त नियम या किसी पाबंदी में जीना है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है।
1: अनुशासन हमें बांधता नहीं है दोस्तों, बल्कि सही मायनों में आजादी देता है अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने की और अपने सपनों को सही दिशा देने की।
0: इसे सीधी सी और सरल सी उदाहरण से समझते हैं।
1: हाँ।
0: जैसे पतंग हवा में तब तक ही ऊंची और सुरक्षित उड़ती है साथियों, जब तक वो डोर से जुड़ी होती है। जैसे ही उसकी डोर कटती है, पतंग थोड़ी देर तो आराम से लहराती है, पर आखिरकार वो नीचे गिर जाती है। हमारी जिंदगी में अनुशासन ठीक उसी डोर की तरह है जो हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है।
1: परफेक्ट एग्जाम्पल है दिव्या। यानी अनुशासन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हंसना खेलना या दोस्तों के साथ वक्त बिताना ही छोड़ दें। इसका सीधा सा मतलब है, जब आप काम या पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कोई भी काम कर रहे हो, तो पूरा आपका ध्यान एक ही जगह पर हो।
0: साथियों, आज के डिजिटल दौर में हमारे युवाओं के सामने सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो वो है ध्यान का भटकना, डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया और लगातार आती नोटिफिकेशंस हमारे कीमती समय को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, और यहाँ पर स्वशासन या हमारा अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो सबसे ज्यादा काम आता है।
1: तो दिव्या, हमारे जो युवा साथी इस समय हमें सुन रहे हैं, वो अपनी दिनचर्या में अनुशासन को सहजता से कैसे शामिल कर सकते हैं?
0: प्रियंका और मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत छोटी आदतों से ही होती है।
1: हाँ।
0: समय का नियोजन यानी टाइम मैनेजमेंट, सुबह उठकर दिन के 2-3 घंटे सबसे महत्वपूर्ण काम तय कर ली और प्रायोरिटी देके उन्हें निपटा ली। और दूसरा है निरंतरता। पढ़ाई हो या कोई हुनर, भले ही रोज आधा घंटा दें लेकिन बिना किसी बहाने के रोज जरूर दें। और फोकस, काम के समय मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर या साइलेंट रख देना चाहिए।
1: यानी कि ये छोटे छोटे कदम आपके लिए सफलता का रास्ता खोल सकते हैं। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो पूरे अनुशासन के साथ करें तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है दोस्तों।
0: बिल्कुल। और साथियों, सफलता किसी एक दिन का चमत्कार नहीं है बल्कि रोज की अनुशासित प्रयासों का परिणाम होती है। तो लगातार कोशिश करते रहिए, क्या पता कब सफलता का बादल आप पर मेहरबान होकर बरस जाए।

0: दोस्तों, अब संगीत की जमीन से सीधे उड़ान भरते हैं अनंत अंतरिक्ष की ओर।
1: अब जरा विज्ञान और तकनीक के उस चमत्कार की बात करते हैं जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर रात के अंधेरे में एक चमकते हुए तारे की तरह तैरता हुआ सा नजर आता है।
0: साथियों, अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ये मानव इतिहास की सबसे महंगी और सबसे जटिल वैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है।
1: और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा सैटेलाइट नहीं है बल्कि अंतरिक्ष में तैरती हुई एक बहुत बड़ी साइंटिफिक लैब है जिसका आकार लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है।
0: और इसके वजन की बात करें साथियों तो लगभग 4,450 टन के करीब, जो वाकई में वजनदार है। और सबसे अनोखी बात ये है कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है, लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा।
1: 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दिव्या, इतनी तेज रफ्तार का मतलब हुआ कि स्पेस स्टेशन हर मिनट में हमारी पूरी पृथ्वी का लगभग एक चक्कर तो लगा ही लेता है ना?
0: बिल्कुल, हर 90 मिनट में हमारी पूरी पृथ्वी का एक चक्कर। और इसका मतलब ये है कि जो इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एक ही दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त के दर्शन कर लेते हैं। जरा सोचिए कितना अद्भुत अनुभव होता होगा उनका,
1: इमेजिन ही नहीं किया जा सकता दिव्या। लेकिन हमारे जो युवा साथी सुन रहे हैं उनके मन में भी एक सवाल तो आ रहा होगा जैसा मेरे दिमाग में।

0: भरा है कि आखिरकार इस विशालकाय स्टेशन को अंतरिक्ष में पहुंचाया कैसे गया।
1: ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है तुम्हारा। अब इतने बड़े स्टेशन को एक बार में रॉकेट से भेजना इम्पॉसिबल था।
0: हाँ।
1: इसके लिए इसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटकर अलग अलग रॉकेट्स के जरिए स्पेस में भेजा गया और फिर एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में ही इसके टुकड़ों को आपस में जोड़ा और इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। तब से लगातार ये काम कर रहा है।
0: और मैंने पढ़ा है ये केवल किसी एक देश का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें अमेरिका की नासा, रूस

0: और इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, तब से ही लगातार ये काम कर रहा है।
1: और मैंने पढ़ा है ये केवल किसी एक देश का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें अमेरिका की नासा, रूस की रोसकॉस्मोस, यूरोप की ईएसए, जापान की जाक्सा, कनाडा की सीएसए, इन जैसी दुनिया की प्रमुख जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, इन सब ने साथ मिलकर इसमें काम किया है और कर भी रही है। ये दुनिया भर के देशों के आपसी सहयोग का एक बहुत कितना अच्छा एग्जांपल है।
0: और बात करें 2000 की, तो नवंबर 2000 के बाद से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया है साथियों जब आईएसएस में इंसान मौजूद ना रहो, यानी पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय में अंतरिक्ष में इंसान लगातार निवास कर रहा है। वहाँ एक समय में 6 से 7 अंतरिक्ष यात्री हमेशा रहते हैं, जो 0 ग्रेविटी में विज्ञान के अनोखे प्रयोग करते आ रहे हैं।
1: देखो दिव्य, 0 ग्रेविटी, इसके अंदर काम करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा है। वहाँ पानी की एक बूंद भी हवा में कैसे तैरने लगती है, एस्ट्रोनॉट्स को हवा में तैरते हुए सोना पड़ता है, और उनकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर नहीं हो, इनके लिए रोज़ स्पेशल मशीनों पर एक्सरसाइज भी उनको करनी पड़ती है, ये भी देखा है मैंने वीडियोज़ के अंदर।
0: वो खुद का ख्याल तो रखते हैं और साथ में वो जो हमारे कैंसर पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी दवाओं पर भी शोध कर रहे हैं, मानव और शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभाव का भी अध्ययन कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में सब्जियाँ उगाने जैसी भी रिसर्च की जा रही है जो भविष्य में मंगल ग्रह और चंद्रमा ग्रह के मिशन में हमारे बहुत काम आएगी।
1: और अगर भारत के हम दृष्टिकोण से देखें दिव्या, तो हमारे लिए भी कितने गर्व की बात है। हमारे भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला और राजा चारी जैसे महान एस्ट्रोनॉट्स ने इस आईएसएस पर जाकर भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है।
0: और सबसे मज़ेदार बात तो ये है साथियों कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हो और आसमान एकदम साफ हो, तो आप खुली आंखों से बिना किसी दूरबीन के भी रात के समय आईएसएस को अपनी छत से जाते हुए देख सकते हैं। ये तेज चमकते हुए बिंदु की तरह बहुत ही तेजी से गुजरता है।
1: क्या बात है, ये अपने सपनों को ऊंची उड़ान देने की एक प्रेरणा भी है।
0: और जब बात प्रेरणा की हो तो भारतीय सेना को कैसे भूला जा सकता है।
1: तो चलिए आइए अब कैलाश खेर की आवाज में सुनते हैं भारतीय सेना को समर्पित ये गीत भारतीय सेना।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: अनुशासन और आईएसएस की सार्थक बातचीत के बाद प्रियंका अब हम रुक करते हैं हमारी मरुधरा की उस अदम्य गौरव, त्याग और अद्भुत स्थापत्य कला की ओर जिसकी चमक आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
1: और जब बात राजस्थान के किलों और उनके शान की हो तो थार के मरुस्थल के बीच शान से खड़े जैसलमेर के किले यानी कि सोनार किले का जिक्र अपने आप ही आ जाता है, जिसे दुनिया भर में गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है।
0: पीले बलुआ पत्थरों से बना ये किला जब सुबह और शाम सूरज की हल्की किरणों से नहाता है तो सचमुच ऐसा प्रतीत होता है मानो थार की विशाल टीलों के बीच सोने का कोई मुकुट सजा हुआ हो। इस अद्भुत दुर्ग की नींव सन 1156 में भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने त्रिकूट पर्वत पर रखी थी।
1: और इसके निर्माण और इसके स्थान के चयन से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पौराणिक लोक कथा भी है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तब श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि उनके यदु वंश का ही एक वंशज आगे चलकर त्रिकुट पर्वत पर एक विशाल राज्य और अभेद्य दुर्ग की स्थापना करेगा।
0: क्या बात है प्रियंका, यानी भाटी राजपूतों को भगवान श्री कृष्ण का ही वंशज माना जाता है।
1: हाँ।
0: इस किले की नींव के पीछे की बात करें तो सदियों पुरानी पौराणिक कथाएं तो जुड़ी हुई है, लेकिन इस किले को सबसे अनूठी और खास बात ये है वो है इसका लिविंग फोर्ट होना।
1: ये दुनिया के उन गिने चुने किलों में से एक है जो आज भी जीवंत है, यानी कि सदियां बीत जाने के बावजूद आज भी जैसलमेर शहर की लगभग एक चौथाई आबादी इस किले के दीवारों के अंदर ही निवास करती है। यहाँ वही पुरानी तंग गलियां, नक्काशीदार घर, दुकानें, प्राचीन जैन मंदिर और विशाल हवेलियां आज भी हैं।
0: और प्रियंका, इस किले की सुंदरता जितनी मनमोहक है इसका इतिहास उतना ही शौर्य, पराक्रम और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। भारतीय इतिहास में जैसलमेर का ये किला अपने ढाई शाखों के लिए बेहद प्रसिद्ध है।
1: और इनमें से सबसे पहला और भयंकर शाखा 13वीं शताब्दी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, जब खिलजी की सेना ने सालों तक किले को घेरे रखा और किले के अंदर रसद और रसद सामग्री खत्म होने लगी। तब भाटी राजपूतों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा का रास्ता चुना।
0: उस कठिन समय में भी वीरांगनाओं ने हंसती हंसती जौहर की पवित्र अग्नि में प्रवेश किया और भाटी वीरों ने केसरिया बाना पहनकर किले के विशाल दरवाजे खोल दिए। वे अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़े और जो आधा साका कहलाता है वो 16वीं शताब्दी में अमीर अली के आक्रमण के समय हुआ था, जब राजपूत वीरों को जौहर का समय नहीं मिला लेकिन उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाते हुए युद्ध जीता।
1: और ये इतिहास आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है दोस्तों। अगर स्थापत्य और

0: वास्तुकला की बात करें ना, तो ये किला इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी का एक बेजोड़ नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके निर्माण में चूने या सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ, और ये बहुत कमाल की बात है।
1: पत्थरों को इस तरह से इंटरलॉक किया गया है साथियों कि सदियों की थपेड़ी और भूकंप के झटके सहने के बावजूद भी यह किला आज भी जस का तस है, यानी पूरी मजबूती के साथ डटा हुआ है। इसके चार विशाल द्वार हैं, अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल।
0: और यहाँ की पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, इन सब के झरोखे और बारीक जालीदार नक्काशी देखकर तो दुनिया भर के पर्यटक दंग रह जाते हैं। और इसके अलावा इस किले के अंदर 12वीं और 15वीं शताब्दी के जैन मंदिर अपनी पत्थरों की कारीगरी के लिए वर्ल्ड फेमस हैं।
1: और प्रियंका, महान फिल्मकार सत्यजीत रे साहब की प्रसिद्ध बांग्ला फिल्म और उपन्यास सोनार केला द गोल्डन फोर्ट ने तो इस किले को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी एक नई पहचान दी है। आज जब भी यहाँ पर्यटक पहुँचते हैं तो किले की प्राचीर से थार के रेगिस्तान में डूबते सूरज का नज़ारा देखकर मंत्रमुग्ध हो ही जाते हैं।
0: इतिहास, त्याग, कला और जीवन संस्कृति का ऐसा अद्भुत मेल दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले।
1: तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी मरुधरा के स्वर्ण दुर्ग को नहीं देखा है तो अपनी अगली यात्रा की सूची में जैसलमेर के सोनार किले को जरूर शामिल कीजिएगा। और हम भी अब शामिल कर लेते हैं आखिरी गीत को हमारे कार्यक्रम में।

0: दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। अब वक्त है उन दोनों प्रश्नों के जवाब जानने का। पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा था,
1: गहरे समुद्र में तेल और गैस को खोजने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है।
0: बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों आप। इस योजना का नाम है समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना। दूसरा प्रश्न दोस्तों हमने आपसे पूछा था,
1: विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है।
0: और इसका सही जवाब है दोस्तों, ग्रीनलैंड। यानी कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी के साथ अब वक्त है दोस्तों रोजगार सूचना का। दोस्तों, IBPS क्लर्क भर्ती का 2026 का 11,403 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा अभी के लिए अक्टूबर 2026 के अंदर प्रस्तावित है।
1: और इस भर्ती के लिए अधिक जानकारी यानी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया सहित अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल

0: वेबसाइट www.ibps.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म 1 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 21 अगस्त है, तो जल्द ही अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और आवेदन कर दें। इसी के साथ अब वक्त होता है दोस्तों कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम पर, तब तक के लिए मैं प्रियंका सोनी
0: और आज्ञा दीजिए आपकी युवा साथी दिव्या को,
1: हम दोनों करते हैं आप सभी को नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही थी प्रियंका सोनी और दिव्या सारस्वत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। श्रोताओं, संध्या के 5:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

संध्या 7 बजे हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, और इस कार्यक्रम की आज प्रस्तुति देंगे अश्वनी व्यास और दीवान दान रत्नू। आज के इस ग्रामीण जगत कार्यक्रम में चर्चा होगी खरीफ में बाजरे की लाभकारी खेती, वर्षा जल संचय, भूमि रिचार्ज और पौधारोपण। के साथ में आज आप जान पाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा और पशुओं को आफरा रोग से बचाएं। इसके साथ ही साथ आज आप श्री सूरज प्रकाश की वार्ता सुन पाएंगे, छत पर सब्जियों की जैविक खेती। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे संध्या 7 बजे हमारे ग्रामीण जगत में।

रात्रि 8:15 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पुनः प्रसारण हम करेंगे 9:15 और रात्रि 10 बजे हम सुनेंगे फिल्म संगीत हमारे स्टूडियो से। लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:30 पर होगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। चर्चा का विषय कार्यक्रम ध्यान रखिएगा रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर आप हमारे स्टूडियो से सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुन पाएंगे गोपाल चंद्र नंदी को। वायलिन पर राग होगी मधुवंती और वायलिन पर साथ में आप सुन पाएंगे राग बागेश्री। छह बजकर 30 मिनट पर सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनिएगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। संध्या 6:05

ये थी आज की हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता है और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। तथाकथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के

0: ये सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया, अनमोल खरब और श्यांशी वली शेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अभी संध्या के 6:05 हुए हैं और ये समय है आप लोगों के लिए फिल्म संगीत का। लीजिए, फिल्म संगीत में आज सुनिएगा यशिता शर्मा और के मोहन की आवाज में आप ये गीत सुनेंगे फिल्म टू स्टेट से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। आप ये गीत सुन पाएंगे फिल्म गदर से।

अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म कोयला से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, और ये गीत सुन पाएंगे आप फिल्म बेशरम से।

0: बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म गजनी से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मलु चैनल है। संध्या के 6:30 होने को है। लीजिए अब सुनिए जयपुर केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी कई बार बाधित हुई। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में देश भर में सबसे अधिक 62,58,000 से ज्यादा किसानों का नामांकन। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत रविदास के समता, सद्भावना और समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के शोर शराबे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही नीट सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बार बार बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने सभी सदस्यों से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इसके साथ ही मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 5.25% पर यथावत रखने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश की आर्थिक वृद्धि जारी है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी रही। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि देश में अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। इनके सुरक्षा फीचर्स और अन्य ब्यौरा जल्द साझा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय

0: अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। अदालत ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया देने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सीजेपी की अगुवाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं। इसके लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से नई दिल्ली में मुलाकात की। श्री बिरला ने कोटा के खेल स्टेडियम में दो नए एथलेटिक्स ट्रैक बनाए जाने की आवश्यकता बताई। साथ ही कोटा को खेल प्रतिभाओं के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की। केंद्रीय खेल मंत्री ने श्री बिरला को कोटा में सुविधाओं के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और देश भर में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रधानमंत्री आवास योजना लखपति दीदी और वीबी रामजी के तहत प्रदेश में हुए कामों की सराहना की है। श्री बागड़े ने आज लोकभवन में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने गांवों में हस्तकलाओं और कौशल विकास से जुड़े कामों के प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने की बात कही। श्री बागड़े ने मानसून के दौरान ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर भी जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक क्रियान्वयन हुआ है। राजस्थान में इस योजना में देश में सबसे ज्यादा 62,58,000 किसानों को नामांकित किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना में साल 2025-2026 में राज्य की लगभग 2,82,00,000 हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में 1,00,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बीमित किया गया, जो राज्य के कुल फसली क्षेत्र का 36% है। योजना में चूरू में 77%, बाड़मेर में 69% और नागौर में 47% सकल फसली इलाके का बीमा कवरेज हुआ है। पिछले 5 सालों में किसानों की ओर से 4,650 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रीमियम हिस्सा जमा किया गया है, जो देश भर में सबसे अधिक है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को सूखा, अकाल, ओलावृष्टि, कीटों और बीमारियों के कारण फसल को हुए नुकसान की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के तहत किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर प्रीमियम का भार वहन करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के उद्देश्य से जोधपुर डिस्कॉम की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं। डिस्कॉम में सहायक अभियंता हिमेश जोशी ने बताया कि लोग इसका फायदा उठाकर बिजली के बिल को न्यूनतम कर सकते हैं।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर 3 किलोवाट तक अधिकतम 70,000 की सब्सिडी है। सरकार की यह मंशा है कि अधिक से अधिक घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाया जाए। जिन लोगों ने यह रूफटॉप सोलर लगा दिया, जिनको सब्सिडी मिल गई है, उनको सरकार द्वारा इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जा रहा है, ताकि गैस से लोगों की जो उपलब्धता है वो खत्म हो गए और लोग लाइट की तरफ बढ़े, जिनके सोलर पे बिजली का जनरेशन हो रहा है। सरकार द्वारा और बैंक के द्वारा भी इसके अंदर सस्पेंड को लोन दिया जा रहा है, इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी नेमाराम ने बताया कि उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है, साथ ही उन्हें सरकार की ओर से इंडक्शन कुकर की भी सौगात मिली है।
2: मैं नेमाराम प्रजापत, शिवनगर पाली। मैंने पीएम सौर घर ऊर्जा का सोलर प्लांट लगाया, जिसमें मेरे को पहले 12,000 लाइट का बिल आता था, अब 1 साल से मुझे 0% बिल आता है और 78,000 की सब्सिडी मिली और आज मुझे सोलर प्लांट का ये सोलर सोलर भी मिला है। जनता से आह्वान करूंगा आप इस सोलर ऊर्जा लगाएं।
0: संत रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके पर प्रदेश में आज से समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के SMS स्टेडियम से यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि ये यात्रा संत गुरु रविदास जी के सामाजिक समता, सद्भाव

0: और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। श्री शर्मा ने कहा कि संतों ने हमेशा समरसता का भाव दिखाया है और समाज को दिशा देने का काम किया है।
1: हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि हमारे संत मुनि महंत ऋषि महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है और ये आज से नहीं सदियों से है। हम ऐसे संतों का मुनियों का महंतों का सम्मान करते हैं। मित्रों, ये भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का महापर्व है।
0: हनुमानगढ़ में आज महिला सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की गई है। बीकानेर रेंज की डीआईजी श्वेता धनकड़ ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह के उत्पीड़न छेड़छाड़ होने पर हेल्पलाइन पर संपर्क कर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
2: पूरे प्रदेश भर में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज पुलिस

0: बीकानेर रेंज की डीआईजी श्वेता धनकड़ ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह के उत्पीड़न छेड़छाड़ होने पर हेल्पलाइन पर संपर्क कर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
1: पूरे प्रदेश भर में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज पुलिस लाइन परिसर में और जिला हनुमानगढ़ में महिलाओं से वाद संवाद किया गया और साथ में जो एक नवाचार जो स्टार्ट किया गया है वो है महिला से सेफ्टी अभियान से रिलेटेड। हमने हेल्पलाइन नंबर सभी को बताया है, वो इस नंबर पे फोन करेंगी, मिस कॉल करेंगी उनके पास वापिस में कॉल जाएगा, उनके पास कोई भी सूचना है वो फ्री होकर जो है बता सकती है पुलिस को और जहां भी वो बताएंगी उस पर कार्यवाही की जाएगी, उनका नाम और उनकी जो सूचना
0: है। और अब मौसम। पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर कल से नया परिसंचरण तंत्र बनने के आसार हैं। इससे मॉनसून के फिर से सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। 7 से 10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने कल 17 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच भरतपुर में आज भी घनघोर घटाएं छाई रही तो सुबह से ही कभी हल्की तो कभी तेज बरसात का दौर चला। नदबई, भुसावर, वैर और बयाना में भी कुछ देर झमाझम बारिश हुई। डीग में भी पिछले दो दिनों से रुक रुक कर कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही है। उधर सवाईमाधोपुर में रिमझिम बरसात से मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि जल संसाधन विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 10% कम बरसात हुई है। 5 जिलों में अत्यधिक पानी बरसा है, वहीं 19 जिलों में सामान्य और 17 जिलों में सामान्य से भी कम बरसात दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी कई बार बाधित हुई। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में देश भर में सबसे अधिक 62,58,000 से ज्यादा किसानों का नामांकन। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संत रविदास के समता, सद्भावना और समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजधानी जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित दौसा शहर का एक नाम देवनगरी भी है। आभा देवी स्थित चांद बावड़ी दौसा जिले की आभा को बढ़ाती है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं चांद बावड़ी परिसर में मौजूद हर्षद माता का मंदिर अपनी स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है। पहाड़ियों और जल स्रोतों से भरपूर झांजीरामपुर मंदिरों के लिए जाना जाता है। वहीं जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी आस्था का प्रमुख केंद्र है। इन दिनों मॉनसून की बारिश के बाद ये पर्यटन स्थल लोगों का ध्यान लगातार आकर्षित कर रहे हैं। एक ओर मौसम सुहावना हो गया है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने अपने खेतों में खरीफ फसल की बुवाई शुरू कर दी है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने दौसा में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीते दिनों पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत दौसा आए। उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने पर दो अधिकारियों को निलंबित भी किया। मंत्री ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना और खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने गोवंश संरक्षण और पशुपालकों के हितों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी। ग्रामीण सेवा शिविर जिले में आमजन के लिए राहत का माध्यम बना। पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत निजामपुरा में लगाए गए शिविर के दौरान स्वामित्व योजना के तहत अरण्यकला गांव के लाभार्थियों को उनके पुश्तैनी मकानों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और पट्टे प्रदान किए गए। लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें अपने मकान का वैध स्वामित्व प्रमाण मिलने से बैंक ऋण सहित विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर

0: सिकराय पंचायत समिति की मानपुर पांचोली और ठीकरिया ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने वहां औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान मिली शिकायतों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने महवा के समलेटी गांव में आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने महवा केंद्रीय बस स्टैंड के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कामों का भी लोकार्पण किया। श्री बैरवा ने कहा कि आयुर्वेद महाविद्यालय बनने से क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और आयुष सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। जिले में आयोजित रोजगार उत्सव में बड़ी संख्या में नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और स्वागत किट वितरित किए गए। ये कार्यक्रम पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से वर्चुअल माध्यम से जुड़ा रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचना, उद्योग, पेयजल और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईसरदा पेयजल परियोजना पूरी होने के बाद दौसा जिले को भी इसका लाभ मिलेगा। जिला प्रभारी सचिव पीसी किशन ने नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, नामांतरण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति और अन्य दस्तावेज वितरित किए। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना और आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। प्रभारी सचिव ने पट्टा प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने तथा शिविरों में ही अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपखरा हंगामा रे चालता आज भी कई बगत रोकनी पड़ी। रिजर्व बैंक रो इन माली बरस माए जीडीपी बढ़ोतरी दर 6.7% रहबारो अंदाजो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत राजस्थान माए देश भर माए सबू बत्ता 62,58,000 कास्कारा रो नामांकन। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा संत रविदास रा समता, सद्भावना और समरसता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबारी बात कही। समाचार आ रहे सागे, मैं रचना पारीक और अब समाचार विगतवार। लोकसभा में आज बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष रा हंगामा रे बीच बिना चर्चा रे पारित कर दियो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओ विधेयक संसद में सदन में पेश करियो। एंड्रो लगस बैंकारा रिकॉर्ड सु जुड़िया साक्षारा कानून ने मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था रे मुजब बनानो है। एंड्रे मार्फत बैंकिंग प्रणाली री हाल री जरूरत रे मुजब कानूनी ढांचा ने आधुनिक बनायो जावेला। विधेयक माए ओ भी प्रावधान है के बैंकारा रिकॉर्डरी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति ने अदालत माए वैध और कानूनी साक्षीरा रूप माए मान्यो जावेला। लोकसभारी कार्यवाही विपखरा शोर शराबारी वजहों काल ताई रे वास्ते रोक दी गई। इनसु पहली सदन री कार्यवाही नीट समेत दूजा मुद्दा माथे विपखरा हंगामा रे चालता आज भी बार बार रुकनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल शुरू कर बारी कोशिश करिया वणा सगला सदस्याओं संसद ने चोखी तरीकाओं चलाबा माए इमदाद कर बारी अरज करी।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन करकर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: राज्यसभा में पहला स्थगन

पछे सभापति सीपी राधाकृष्णन प्रश्नकाल शुरू करिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कया के देश रा न्यारा न्यारा हल्का माय ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करिया जावेला सरकार 300 इणभातरा संस्थाना ने मंजूरी दे चुकी है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई चालू माली बरस माय देशरी माली दर रो अनुमान बढ़ार 6.7 फीसदी कर दियो है इंडेस आगे ही मौद्रिक नीति समिति रेपो दर 5.25 फीसदी जो कि त्यों राखबारो फैसलो करियो है आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा आज मौद्रिक नीति रो ऐलान करियो वे कया के 32 मांगरी वजह सु देशरी आर्थिक वृद्धि जारी है भारत दुनिया री सबू तेजी सु बढ़ती वी अर्थव्यवस्था बणियो वियो है चालू माली बरस री अप्रैल जून तिमाही माय अर्थव्यवस्था रो प्रदर्शन उम्मीद सु बत्तो रियो रिजर्व बैंक माली बरस 2026-27 खातर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माथे आधारित महंगाई रो अंदाजो 5.1 फीसदी सु घटार 5 फीसदी कर दियो श्री मल्होत्रा कया के हाल ताई महंगाई बदबारो खास कारण खाबा और ईंधन री कीमता माए बढ़ोतरी है पश्चिमी एशिया में चल रही लड़ाई की वजह से व्यापार रा खास रास्ता माथे घणो असर पड़ियो है जिनसु दुनिया भर माथे माली दबाव पड़ियो है रिजर्व बैंक रा गवर्नर कया के देश में आवता माली बरस री शुरुआत में प्लास्टिक रा नोट चलन में आ जावेला मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में वणा कया के प्लास्टिक रा नोट बत्ता टिकाऊ होवे है सर्वोच्च न्यायालय कयो के युवा छात्र प्रदर्शनकारिया ने लेर आपरा विचार राखता टेम अहलकारा ने संयम बरतनो चाहिजे अदालत कयो के हिंसा ने रोकबा खातर किणी भी भांतरी हिंसक प्रतिक्रिया देबासु हालात बिगड़ सके है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांतरी अगुवाई वाली पीठ कॉकरोच जनता पार्टी रे खिलाफ कार्यवाही री मांग वाली याचिका माथे सुनवाई करता थका आ टिप्पणी करी याचिका माए दिल्ली और देशरा दूजा हलका माए सीजेपी री अगुवाई माए प्रदर्शन रे दौरान पत्थरबाजी रा आरोप भी भेला है इन खातर पार्टी री कथित जिम्मेदारी रे खिलाफ कार्यवाही री मांग करी गई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा माए खेल सुविधावा ने बढ़ावा खातर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया सु नई दिल्ली माए मुलाकात करी श्री बिरला कोटा रा खेल स्टेडियम माए दो नया एथलेटिक्स ट्रैक बना जाबा माथे जरूरत बताई साथ ही कोटा ने खेल प्रतिभावां रा मजबूत केंद्र रा रूप माए बढ़ावा खातर जरूरी सुविधा देबा माथे चर्चा करी केंद्रीय खेल मंत्री श्री बिरला ने कोटा माए सुविधावां ने बढ़ावा खातर इमदाद देबारी आस बंधाई वे कया के केंद्र सरकार खेल संस्कृति ने बढ़ावो देबा और देश भर माए विश्व स्तरीय खेल सुविधा रा विकास खातर प्रतिबद्ध है ये समाचार आप आकाशवाणी राजयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जोर शोरों चल रही है राजस्थान में इन योजना में देश में सबू बत्ता 62,58,000 कासकाना ने नामांकित करियो गयो है पीएम फसल बीमा योजना में बरस 2025-26 में राज्य री करीब 2,82,00,000 हेक्टर सफल फसली हलका माए 1,00,00,000 हेक्टेयर हलको बीमित करियो गयो है जो राज्य रा कुल फसली हलका रो 36% है योजना माए चूरू माए 77 बाड़मेर माए 69 और नागौर माए 47% सकल फसली इलाका रो बीमो कवरेज वियो है लारला 5 साला माए कासकारा रिकानी हूं 4,650 करोड़ रुपया सु बत्ता रो प्रीमियम हिस्सो जमा करायो गयो है जो देश भर माए सबू बत्तो है ध्यान जोग है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कासकारा ने सूखा अकाल ओला पड़बा कीट और बीमारियां री वजह से फसल ने व्या नुकसान ने माली सुरक्षा देवे है योजना रे तहत कास्तकार राज्य और केंद्र सरकार मिलर प्रीमियम रो भाव उठावे है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना री जानकारी बत्ताऊ बत्ता लोगा ने देबारा लगासूं जोधपुर डिस्कामरी कानियो कैंप लगाया जा रिया है डिस्कामरा सहायक अभियंता हेमेश जोशी बताया के लोग इनरो फायदो उठार बिजली रा बिल माए कमी ला सके है

0: मुख्य बिजली योजना के अंतर्गत हर 3 किलोवाट तक अधिकतम 70,000 की सब्सिडी है। सरकार की यह मंशा है कि अधिक से अधिक घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाया जाए। जिन लोगों ने यह रूफटॉप सोलर लगा दिया, जिनको सब्सिडी मिल गई है, उनको सरकार द्वारा इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जा रहा है, ताकि गैस से लोगों की जो उपलब्धता है वो खत्म हो गए और लोग लाइट की तरफ बढ़े जिनके सोलर पे बिजली का जनरेशन हो रहा है। सरकार द्वारा और बैंक के द्वारा भी इसके अंदर सस्पेंड को लोन दिया जा रहा है, इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रा लाभार्थी नेमाराम बतायो के वारो बिजली रो बिल शून्य वे गयो है, साथ ही वाने सरकारी का न्यू इंडक्शन कुकर दियो गयो।
2: मैं नेमाराम प्रजापत श्रीनगर पाली, मैंने पीएम सौर घर ऊर्जा का सोलर प्लांट लगाया, जिसमें मेरे को पहले 12,000 लाइट का बिल आता था, अब एक साल से मुझे एक 0% बिल आता है और 78,000 की सब्सिडी मिली और आज मुझे सोलर प्लांट का ये सोलर कूलर भी मिला है। जनता से आह्वान करूंगा आप भी सोलर ऊर्जा लगाएं।
1: संत रविदास जी री 650वीं जयंती रे मौके प्रदेश में आज समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा री शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा एसएमएस स्टेडियम सु यात्रा री शुरुआत करी। इन मौके श्री शर्मा कया के आ यात्रा संत गुरु रविदास जी रा सामाजिक समता, सद्भाव और मानवता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबा रो जरियो बनेला। वणा कया के संत हमेशा समरसता रो भाव दिखावा और समाज ने दिशा देबा रो काम करियो है।
3: हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि हमारे संत मुनि महंत ऋषि महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है और ये आज से नहीं सदियों से है। हम ऐसे संतों का, मुनियों का, महंतों का सम्मान करते हैं। मित्रों, ये भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का महापर्व है।
1: प्रदेश की पहली महिला सुरक्षा हेल्पलाइन हनुमानगढ़ माय शुरू करी गई। बीकानेर रेंजरी डीआईजी श्वेता धनकड़ इनरी शुरुआत करी। इन दौरान वणा महिला वासु बातचीत करी। वे कया कि किणी भी भांतरा उत्पीड़न और छेड़छाड़ हुबा माथे हेल्पलाइन माथे संपर्क कर तुरंत पुलिस री इमदाद हासिल करी जा सके है।
4: पूरे प्रदेश भर में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज पुलिस लाइन परिसर में और जिला हनुमानगढ़ में महिलाओं से वाद संवाद किया गया और साथ में जो एक नवाचार जो स्टार्ट किया गया है वो है महिला से सेफ्टी अभियान से रिलेटेड। हमने हेल्पलाइन नंबर सभी को बताया है, वो इस नंबर पे फोन करेंगी, मिस कॉल करेंगी, उनके पास वापिस में कॉल जाएगा, उनके पास कोई भी सूचना है वो फ्री होकर जो है बता सकती है पुलिस को और जहां भी वो बताएंगी उस पर कार्यवाही की जाएगी, उनका नाम और उनकी जो सूचना है गोपनीय रखें।
1: पूर्वी राजस्थान और आरएसआरए रा हल्का रे ऊपर कालसून नुवो परिसंचरण तंत्र बनबारा आसार है। इनसु मानसून रे फेरू सक्रिय होबा और तेज बारिश होबारो अंदाजो है। 7-10 अगस्त रे दौरान भरतपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग रा कुछ एक हल्का माए हल्की सु तेज बारिश वह सके है। वठीने कठे कठे भारी और घटा टोप में बरस बारा आसार भी है। मौसम महकमो काल 17 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी करियो है। इन बीच आज भरतपुर माए बादला छाया रिया, अठे सुमारा सुही कठे कठे हल्की तो कठे तेज बरसात रो दौड़ चालियो। नदबई, भुसावर, बैर और बयाना माए भी थोड़ी देर झमाझम में बरसियो। डीग माए भी लाड़ला दो दुनाओं रुक रुक कर में बरस रियो है। वठीने सवाई माधोपुर माए झिरमिर में बरस बासु मौसम सुहावणो वैग्यो। हालांकि जल संसाधन महकमा रे मुजब इन मानसून सीजन माए हाल ताई सामान्य सु 10% कम बरसात भी है, जत के 5 जिला माए 32 में बरसियो, बट ही 19 जिला माए सामान्य और 17 जिला माए सामान्य सु कम में बरसियो है। और अब आखिर माए खास खबरां एकर फेरूं। संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा हंगामा रे चलता आज भी कई बगत रोकनी पड़ी। रिजर्व बैंक रो इन माली बरस माए जीडीपी बढ़ोतरी दर 6.7% रहबारो अंदाजो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत राजस्थान माए देश भर माए सबू 62,58,000 कास्कारा रो नामांकन। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संत रविदास रा समता, सद्भावना और समरसता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबारी बात कही। इंद्र सागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो, वहां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित।

0: जावेला नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ज और FM 101.6 मेगाहर्ज पर संध्या के 7 बजे हैं और ये समय है हमारे ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्रामीण जगत का। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं अश्वनी व्यास और दीवानदान रत्नू।

0: साई को नहीं तो अपने बे रोग भी को नहीं हो तो शरीर भी अपनो स्वस्थ रहती और सागे सागे जिका किसान भाई बाजरे उत्पादन ले रहा है वे भी चोखो दाम कमा पासी तो दोनों खानी ओ बाजरो जी को है वो फायदे की बात
1: है। मतलब ओ तो फायदेमंद अपारे बाजरो अबारी बखत में मोटे अनाज रो प्रमुख सबो उत्तम स्थिति में बाजरो आवे और बाजरे सु देखो टाबरा ने जवाना ने बूढ़ा ने और महिलावा ने सबू ज्यादा फायदो देखो सबा ने सब वर्ग ने हो सके क्योंकि महिलाओं में खून री कमी हुए तो बाजरो खून री कमी री पूर्ति करे हैं। और सा देखो बूढ़ा ने यदि अपा गोडा वोडा हाड पग दुखे है तो बीज की मात्रा हुए इनमें भरपूर हुए तो बाबी इन्हें पूर्ति करे और टाबरा रो पोषक पोषण है बढ़े व सारा ऊर्जा बढ़े तो वो भी आयोडीन वगैरह री पूर्ति करे तो बाजरो यहाँ टाबरा वास्ते भी जरूरी है।
0: सागे सागे दीवान भाई मैं थाने बताऊँ आजकल कहीं है कि आजकल जी का बच्चा है नहीं बयान अगर आप कोई चीज़ खावण वास्ते कहवा तो भाई झटदनी से भी न खावे को नहीं बे पूछे इनमें कई चीज़ है तो आपने थोड़ी वैज्ञानिक बात भी अगर बच्चा ने बताता रहे वहाँ और चर्चा करता रहे वहाँ कि इनमें कहीं कहीं होवे तो ईरो जी को खाने रो दौर है वो घनो जैसी तो थाने एक बात बताऊँ कि इनमें कैल्शियम फास्फोरस विटामिन ग्लूटन फ्री मैग्नीशियम जिका छोटा मोटा तत्व तो अपने शरीर ने विकास होने वास्ते और स्वस्थ रहने वास्ते आवश्यकता हुए वे भरपूर मात्रा में हुए तो ई बाजरे रो उपयोग अगर आप ई हिसाब से बच्चा ने बतावा तो खाण में भी वो बढ़िया है और देखो किसान भाई ने तो इस लाभ है ही
1: मिले ही ऐसा तो अश्विनी भाई बिल्कुल मुंडेरी बात छीन ली थे भी श्रोता भी चावे थे भी चाहो और मैं भी चाहूँ के अब गीतर लेरी बारी है
0: बिल्कुल तो सुना पाई सावण रो पहलड़ो चोखोसो लोक गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
2: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
1: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
2: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2,000 से 5,000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
2: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
4: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
4: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास, आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।

0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: अश्विनी भाई, आज रो युग है वो विज्ञान रो युग है।
3: बिल्कुल।
2: और आजकल प्रगतिशील किसान है, किसान भाई भी नए नए तरीकों विज्ञान युग में खेतीबाड़ी में नयापन ले रहा है, और खेतीबाड़ी भी विज्ञान रे तरीकों और ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन भी हो रही है और प्रोग्रेस भी हो रही है, विकास रे नया आयाम से हो रहा है। तो इन्हीं कड़ी में आज अब आगे अगली कड़ी में पास सुना वार्ता, और ये वार्ता विषय है छत पर सब्जियों की जैविक खेती। जैविक खेती घनी महत्व है आज रे वक्त में किसान भाया, और अपा छत पे भी किन प्रकार सब्जियां री खेती कर सका, और यदि हमारे जगह री कमी हुए तो किन प्रकार अपा छत पर सब्जियों की जैविक खेती कर सका। तो आ सुना वार्ता, और वार्ताकार है श्री सूरज प्रकाश। सुना सा आ वार्ता।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, पोषण सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा आज का विषय है छत पर सब्जियों की जैविक खेती। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, सीमित कृषि भूमि, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग तथा शहरी क्षेत्रों में हरियाली की कमी ने हमें वैकल्पिक खेती की ओर सोचने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे में यदि हम अपने घर की छत पर ही जैविक तरीके से ताज़ी, सुरक्षित और पौष्टिक सब्जियां उगाएं तो यह न केवल हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, बल्कि प्रकृति के संरक्षण में भी हमारी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। छत पर खेती या रूफ टॉप गार्डनिंग एक ऐसी आधुनिक शहरी कृषि पद्धति है जिसमें घर की छत पर उपलब्ध खाली स्थान का उपयोग करते हुए गमलों, कंटेनरों या ग्रो बैग में सब्जियों, फल फूल एवं औषधीय पौधे उगाए जाते हैं। इससे हमें वर्ष भर ताज़ी सब्जियां मिलती हैं, जिससे बाजार पर निर्भरता कम होती है और परिवार को रसायन मुक्त भोजन उपलब्ध होता है। साथ ही घर की छत पर हरियाली होने से वातावरण शुद्ध रहता है और गर्मियों में भवन का तापमान कम होता है और मानसिक शांति भी पर्याप्त होती है। अब बात करते हैं कि छत पर खेती की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी छत पर जलरोधक व्यवस्था हो। यदि जलरोधक परत नहीं होगी तो सिंचाई के दौरान पानी रिसकर भवन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कंटेनरों को मजबूत स्टैंड या ईंटों के ऊपर रखें तथा अतिरिक्त पानी की निकासी की उचित व्यवस्था अवश्य करें। यदि संभव हो तो छत पर क्ले टाइल्स या प्लास्टिक सीट का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद आवश्यक सामग्री जैसे स्वस्थ बीज या पौधे, गमले, ग्रो बैग, खुरपी, पानी देने का कैन, पोटिंग मिश्रण और जैविक खाद पहले से एकत्रित कर लें। कंटेनर का चयन पौधे की आवश्यकता अनुसार करें। छोटे पौधे एवं उथली जड़ वाले पौधों के लिए छोटे गमले तथा टमाटर, बैंगन, मिर्च या शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के लिए बड़े ग्रो बैग या कंटेनर उपयुक्त रहते हैं। ध्यान रखें कि प्रत्येक गमले के नीचे जल निकासी के लिए कम से कम 2 या 3 छिद्र अवश्य हो, ताकि अतिरिक्त पानी का आसानी से बाहर निकल सके और पौधे की जड़ों में सड़न न हो। सामान्य खेत की मिट्टी की अपेक्षा पोटिंग मिश्रण का उपयोग अधिक लाभकारी होता है। पोटिंग मिश्रण हल्का, भुरभुरा और जल निकास वाला होता है। इसे गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट तथा रेत को उचित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। यह मिश्रण पौधों की जड़ों के बेहतर विकास, पर्याप्त वायु संचार और आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। बीज हमेशा प्रमाणित एवं जैविक स्रोत से ही खरीदें। बुवाई से पहले बीजों को बीजामृत से उपचारित करें। बीजामृत बनाने के लिए बेसन, गोबर, गाय का मूत्र का प्रयोग करके 2 से 3 दिन बाद बीजों को

0: छिड़क कर परत तैयार करके बुवाई करें, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। साथ ही प्रारंभिक रोगों से सुरक्षा मिलती है। जिन सब्जियों की पौध तैयार करनी है, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन और पत्ता गोभी, इनके लिए बीजों को प्लास्टिक बीज ट्रे में उगाकर 20 से 25 दिन बाद या पौधे की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाए अथवा पौधों में 3 से 4 वास्तविक पत्तियां आ जाए तब गमलों में स्थानांतरित करें। सिंचाई का विशेष ध्यान भी रखना आवश्यक है। छत पर रखे गमलों की मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए मौसम के अनुसार ही पानी दें। गर्मियों में 3 से 4 दिन के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार शाम के समय सिंचाई करें, जबकि सर्दियों में 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई देना पर्याप्त रहता है। यदि संभव हो तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाएं, जिससे पानी की बचत होगी और पौधों को समान मात्रा में नमी मिलती रहेगी। पौधों को तेज़ धूप और पाले से बचाने के लिए ग्रीन शेड नेट का उपयोग करें, इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है तथा उत्पादन भी बढ़ता है। अब प्रश्न आता है कि छत पर कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं। तो मध्यम आकार के गमलों या ग्रो बैग में गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, चुकंदर, टमाटर, गाजर, प्याज, मिर्च, मूली आसानी से उगाई जा सकती है। छोटे कंटेनरों में पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, धनिया, मेथी, लेट्यूस, सरसों के पत्ते भी लगाए जा सकते हैं, और यदि पर्याप्त स्थान हो तो बोनी किस्म के फलदार पौधे, संतरा, अमरूद, नींबू, पपीता भी लगाए जा सकते हैं। इन बोनी किस्मों की विशेषता होती है कि ये छोटे आकार में उगते हैं, जिससे छत या सीमित स्थान पर भी इनका पोषण एवं वृद्धि का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। छत पर सौंदर्यता के लिए गुलाब, गेंदा, लिली, जैस्मिन, गुड़हल और औषधीय पौधे तुलसी, पुदीना, अजवाइन, एलोवेरा, करी पत्ता उगाए जा सकते हैं, जो सजावट के साथ साथ छत पर पर्यावरण, सुगंध और सौंदर्य में योगदान करते हैं। इससे आपकी छत एक छोटे से हरे भरे बगीचे का रूप ले लेगी। जैविक सब्जी उत्पादन में उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व है। पौधों को समय समय पर वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी खाद, जीवामृत और घन जीवामृत तथा घर में उपलब्ध जैविक अपशिष्ट जैसे चाय की पत्ती, फल एवं सब्जियों के छिलकों से बनी कंपोस्ट खाद का ही उपयोग करें। इससे पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से पर्याप्त होते हैं और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। यदि पौधों में किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई दे तो जैविक तरल खाद का छिड़काव करें। कीट एवं रोग प्रबंधन के लिए रासायनिक दवाइयों की अपेक्षा जैविक उपाय अपनाएं। यदि रस चूसक वाले कीट, फल छेदक या फल पत्तियां खाने वाले कीट दिखाई दे तो नीमास्त्र, अग्निअस्त्रम या ब्रह्मास्त्रम जैसे जैविक कीटनाशक घोल का छिड़काव करें। समय समय पर पौधों का निरीक्षण करें तथा रोगग्रस्त पत्तियों एवं फलों को तुरंत हटा दें। इससे रोगों का फैलाव रुकता है और पौधे स्वस्थ बने रहते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, छत पर जैविक खेती केवल सब्जियां उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का माध्यम भी है। इससे परिवार के सभी सदस्य पौधों की देखभाल में भाग लेते हैं, बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। इसके अतिरिक्त यह एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम भी है, जिससे शरीर सक्रिय रहता है और रक्त संचार बेहतर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने ही घर में उगाई गई ताज़ा, सुरक्षित और रसायन मुक्त सब्जियां उपलब्ध होती है। तो आइए आज ही संकल्प लें कि अपनी छत के छोटे से खाली स्थान को हरा भरा बनाएंगे, जैविक खेती अपनाएंगे और अपने परिवार को स्वस्थ एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराएंगे। याद रखिए, हर घर की छत बने हरियाली की छत, हर परिवार का सपना बने जैविक बगीचा। धन्यवाद।
1: अश्विनी भाई, वार्ता घनी मैं तो ही
2: अवारापा दीवान भाई जी की वार्ता रही थी बात कर रहे हो, तो छत पर सब्जियां री जैविक खेती आप पकियां कर सका आ वार्ता वारापा सुनी। वार्ताकार था श्री सूरज प्रकाश, प्रस्तुति थी श्री रेवत राव।

लेघरी और संयोजन थो श्री अमित सिंह जी रो। तो अब आपा वार्ताकार जी ने एक गीत सुना परा और आपा भी गीत रो आनंद लेसा। तो सुना आपा ही कार्यक्रम रो अगलो लोक गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो बार आप गीत सुनो। और दीवान भाई, अबार जी को मानसून रो समय है, ई टाइम खूब बरसाता चारू खानी हो रही है।
3: बिल्कुल।
2: तो एज की बरसाता है, ओज को पानी है, ई पानी रो संरक्षण करनो आपने सबसे ज़्यादा जरूरी है।
3: बहुत जरूरी है। देखो सुनी भाई, के आदि अनादिकाल सु भारतवर्ष में भी, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में पानी री जिकी कमी है, तो बात तो जग जावी है। अपने भी अठे पानी रो संरक्षण रो घणो महत्व है और करा भी आ। गांव गुआड़ हर परिवार तक पानी रो संरक्षण देखे। और आज रे वक्त में यदि पानी री सुलभता हुई है, लेकिन अपा पहला यदि ग्रामीण प्रवेश में जार पानी री संरक्षण री झलक देखा तो बहुत ही विशाल रूप में मिले। क्योंकि अपा सामूहिक रूप री बात करा अश्विनी भाई, तो गांव में जोड़ है, पायतन है, तालाब है, एक जोरदार नमूना है पानी संरक्षण रा। और अपनी सरकार याने पक्का कर पर और पक्का तालाब ने बंधार और भी संरक्षण रो एक सुदृढ़ केंद्र है, जठे अपा आज भी जवा तो घणो सारो पानी, बरसात रो पानी इकटो ओड़ो है। अर वो भी गाँव रे वास्ते सामूहिक रूप काम भी आवे।
2: बिल्कुल दीवान भाई। और जिको बरसात रो जल है बिना पा पाले रो पानी भी कया कर रहा
3: है।
2: घना ही लोग ऐसा है जिका ई पानी रो ही जीवन पर्यंत सेवन करे और इरे भरोसे जिंदा रहे, इरे मायने गुणारी भी खान होवे। लेकिन दीवान भाई, आप तालाब रे साधन सु या जोहर पायतान रे साधन सु जिको पानी भेड़ो कर सका वो तो हो ही जावे, आगोर सु जिको पानी आवे। लेकिन अनेको बार आप देखा कि गांव रे मायने या अपने खेता रे मायने या अपने जिका गोचर है बेर मायने कोई जमीन प्राकृतिक रूप से नीची रहे, तो बठे पानी तो भरी जावे लेकिन वो पानी सूखे को नहीं और बड़ी तादाद में बठे पानी बेड़ो जावे। बीर वास्तर सरकार लारे योजना भी चलाई थी कि आपा अगर आपने खेत में, अगर आपने गांव में या कोई खुले स्थान रे मायने रिचार्ज कुआं रो निर्माण करवा देवा, तो बे रिचार्ज कुआं जिका है बे बरसात रे पानी ने भेड़ो कर और जमीन रे मायने पताल में बेच दे,
3: पताल कुआं।
2: और भी पताल में पानी जाने सो जिका आपने जल रा खन्ने खन्ने रा कुआं है, जिका जल रा स्त्रोत है, जिकी बावड़िया है, बे प्राकृतिक रूप से पाछो ब्याह में पानी आ जावे।
3: बिल्कुल सही।
2: तो अपन वो चाहिए कि अपने खेत रे आसपास अगर इसी कोई जगह है जठे पानी रो ज्यादा भराव हो रही है या गांव में कठी ज्यादा भराव हो रही है,
3: एक तो पानी हो रही है कठी,
2: तो आप भी रिचार्ज कुआरे मायने पानी ने भेजा ताकि आप जमीन रे जल स्तर बढ़े,
3: पानी बढ़ा सका। पानी रो स्तर है, जमीन रो पानी रो जल स्तर है, वो भी आप वृद्धि कर सका।
2: विद्वान भाई थाने एक बात और बताऊं कि बहुत से गांव रे मायने पुराने जमाने रे मायने लोग गांव रे बीच रे मायने ऐसा रिचार्ज स्थल बनाएड़ा था, लेकिन धीरे धीरे लोगारी उपेक्षा रे कारण बीवा में पानी को नहीं जा रहे हो। तो अगर आप संगठित हो और बड़े साफ सफाई कर
3: वापिस में रिचार्ज कर सके
2: और बीया ने पाछा तैयार कर ला, या अपन कोई बोरवेल है जिको अब सूख गयो
3: है
2: तो बिना भी आप इस तरीके की व्यवस्था कर दा कि भी बोरवेल रे माध्यम से पाछो पानी जमीन में जाता रहे, तो

0: अच्छा तरह पानी दीजिए कि एक एक बूंद है नी बीरी कीमत
1: बाबा
0: बहुत ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा।
0: अगर आपा सगड़ा मिलपरा और सामूहिक रूप से ये जल रो संरक्षण करा तो जल आपाने भविष्य ने सुधार सके, ये प्रकृति ने बचा सके और आपाना जी का जल रा स्रोत है बे भरिया रह
1: मजबूत
0: सके।
1: मजबूत हो सके।
0: जब पानी आपानी जमीन में रहसी दीवान भाई तो आपाने हरियाली भी चारूखानी चोखी दिखसी और आपा जी को पौधा रोपण ई मानसून में कर रहा हाँ, जगह जगह बीज
1: वृक्षारोपण कर
0: बो
1: रहे
0: रहा हाँ, जब आप गोचर ने हरे भरे करने की बात कर रहा हाँ, तो वो जद ही हो सी जब आप सामूहिक प्रयास कर सा।
1: प्रयास करें। बिल्कुल
0: तो
1: अश्विनी भाई, अपा वृक्षारोपण करा और वृक्षारोपण रो समूह बढ़िया जोरदार समय है आज रो बखत में जी का। अब आर चौमासो है किसान भैया, एट प्रजेंट जी को चौमास रे में आपा इन बखत में जिकी वर्षाणी रे ऋतु में जिको भी वृक्ष लगा वाला तो वो पक्को ही पन पहला, बस थोड़ो सो ध्यान रखने रे वास्ते वृक्षारोपण भी करो, वृक्ष भी लगाओ, रूख भी लगाओ, लेकिन जल संरक्षण ने नहीं भूला आपा। जल ने संरक्षण रे जी का साधन है वे भी अपनावा। एक और बताऊँ, व्यक्तिगत जल संरक्षण है अश्विनी भाई मेरी घनी जरूरत है अपाने महता हुए, क्योंकि अपा प्रत्येक गांव में देखा भी यहाँ टांका बिनुड़ा है, भी टांका में आगोर वगैरह पुराना अपार आगोर है, तो भी आगोरा ने साफ कर और अपार भी टांका में पानी पी रखा, और वो पानी जो को पालर पानी है बहुत ही महता हुआ है, भी पालर पानी रे जा गुण है बहुत जोरदार है, वो अपारे शरीर स्वास्थ्य वास्ते भी बहुत ही एक तरह अमृत समान है।
0: बिल्कुल।
1: और देखो अश्विनी भाई, अब तो बातें और चर्चा तो और भी आगे है, अब जरूरत पड़े है अपन किसान बहन वास्ते अपने साथ है एक चौके से गीतर ले रही
0: तो सुना पकारे कपड़ो अगलो लोग गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
2: प्रस्तावना: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है

0: और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
1: तो दीवान भाई, आप बहुत चोखी जानकारी हासिल करी, आभार। और अब आप बात करा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी की है, इरी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा किसान भाइयों रे हितां वास्तर करी गई थी।
2: बिल्कुल।
1: और ई योजना सो किसान भाइयों ने जिको फसल है बिपर बीमे रो लाभ मिल रो है। प्राकृतिक आपदा है, चाहे काल है, चाहे अतिवृष्टि है, चाहे अनावृष्टि है, फसल खराबो है, बीज खराब हो गयो, दाणो नहीं आयो, ई स्थिति सु बचण वास्तर किसान भाइयों ने सरकार आ एक संजीवनी योजना दी है, जिके रे मायने बहुत ही थोड़ो प्रीमियम किसान भाइयों ने भरनो होवे और बिपर जिको बियाने नुकसान है बिरो सगड़ो फसल सुरक्षा रो मिल जावे फायदो। तो दीवान भाई, इर मायने थाने छोटी सी चीज मैं बताऊं कि खरीफ री फसल जिकी है बिर माने किसान भाई ने 2% प्रीमियम, रबी री अगर फसल है तो 1.5% प्रीमियम, और जिका किसान और प्रगतिशील भाई है बिया बागवानी और नकदी फसल आप खेता में लगाया करे है तो बिया ने 5% प्रीमियम भरना होगा।
2: बिल्कुल अश्विनी भाई। और अब देखो एक अश्विनी भाई, आप किसान भाई ने ध्यान भी वेला के फसल बीमा है वो साल में आप दो बार करीजे, ठीक है। एक तो अपा ओ करा जुलाई में और एक अपा करा जनवरी में। जनवरी में तो रबी री फसल रो फसल बीमा कराई सका और जुलाई में कराई सका आपा खरीफ री फसल रो, जो को अबार जुलाई गई भी है लेकिन किसान भाया जुलाई आड़ो फसल बीमो है वो आज सरकार अपारे 15 दिन आगे बढ़ाई दिया है। अब अपा वो 15 अगस्त तक फसल बीमो करा सका। अबार में मतलब अपा अगस्त में अबार राजस्थान सरकार है फसल बीमे की तारीख आगे बढ़ा सकी है। अगस्त में अबार वक्त में भी आप फसल बीमो करा सका, पर इस वास्ते दस्तावेज है वह कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपा आधार कार्ड है, बैंक खाता पासबुक है, जमीन रा कागजात खसरा नंबर है या अपार जमाबंदी नकल है कागजात हो है, और अपारो एक बैंक में खाता होना जरूरी है। पचे अपा एक तो केसीसी रिमार पत्र फसल बीमो है और एक अपा ई मित्र कैसे कुंजा पर और फसल बीमो कराई सका। केसीसी रिमार पत्र फसल बीमो है वो किसान भाई स्वतः ही बैंक फसल बीमो कराई देवे। इन प्रकार अश्विनी भाई अपा फसल बीमा रो फायदो ले सका।
1: और सागे सागे अगर कोई भाई खुद सु इरो आवेदन करना चाहे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना री ईरिजगी आधिकारिक पोर्टल है बैठे जा परो और फॉर्मर कॉर्नर पर जार क्लिक करे, आप रो विवरण भरे, पंजीयन करे और फसल की जानकारी दर्ज करे, फिर बाद में निर्धारित प्रीमियम रो ऑनलाइन भुगतान करे और आप रो जिको फसल है बिना बीमित कर ले। तो दीवान भाई आ तो हुई फसल बीमा योजना री बात। अब आपा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और सुना कार्यक्रम रोकलो लोकगीत।

0: तो दीवान भाई अबार जी को बरसात रो मौसम है तो बिर मायने पशुआ रे मायने आफरो रोग होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहा करे है। तो किसान भाई ने ये बात रो ध्यान रखना है कि आफरे रा कई कारण है और बेरो कई निदान है।
1: सही बात है।
0: तो अगर कोई जानवर दूषित या सड़ो सड़ो रो चारो खा लेवे तो भी सुबेरे आफरो जावे, या मान लो कि ज्यादा चारो खा लेवे भूखसु तो भी आफरो हो सके।
1: और अपारे खेतारे में जहाँ अबार फसल है, जहाँ गंवारी फसल है, मोटरी फसल है, तो आ ज्यादा खाई जावे यदि अवारा पशु है बहु माया अपार खेती रे माया जाओ परे तो उनसु भी आफरो होने की पूरी संभावना रहे,
0: पूरी संभावना बना रहे। तो किसान भाई ने चीज रो ध्यान रखना है कि अगर अपने पशुओं में आफरे की समस्या है तो बेरो अपने प्राकृतिक रूप से भी आप इलाज कर सका, जिया अजवाइन और काड़ो नमक घोलर दे सका, सौफरी ने पानी में गर्म कर वो पिला सका, थोड़ो चला देवा, या बिने हॉट बैग से भी सिकाई कर दा तो आफरे में राहत मिल जाए। लेकिन अगर मान लो कि राहत नहीं मिल रही है तो अपने चिकित्सक ने दिखा परो और बेरो तुरंत इलाज करवाना है ताकि समय पर पशु जी को है वो रोग से निकल जावे। दीवान भाई अब समय जी को है नहीं अपनी विदा लेवल रो है। तो आज रे कार्यक्रम में आप बहुत चौकी चौकी जानकारी हासिल करी और सुनिया चोखा गीत। अब अश्वनी व्यास
1: और दीवान दान रत्नू ने देव
0: घना घना राम राम, राम, राम।

0: अभी ग्रामीण श्रोताओं ने सुना अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे दीवानदान रत्नू और अश्वनी व्यास। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़।
1: और लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर ढाई घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि इस सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉ एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तन्खा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम

पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्जवल निकम आदि ने भाग लिया। करीब ढाई घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर

0: 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल हैं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार्य बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंक कार्य बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे। हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंक कार्य बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे संसद समीक्षा।
2: This is Akashvani, a review of today's parliament proceedings read by Reshma Tiwari. First, from the Rajya Sabha. The writer is Sanjeev Chopra of PTI. The Rajya Sabha today approved the bill to raise the number of judges in the Supreme Court, with Law Minister Arjun Ram Meghwal asserting that the government is committed to maintaining the independence of the judiciary. The upper house cleared the Supreme Court.

बेताब फिल्म से अभी आपने गीत सुना शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अगला गीत सुनिएगा, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत सुनेंगे फिल्म आप दिल से।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में पहला लोक गीत सुनिएगा सीमा मिश्रा की आवाज़ में और उनके साथ में है

0: सतीश और सीमा मिश्रा की आवाज़ के साथ ही लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। लीजिए अब सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, पश्चात अंग्रेजी में समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान

0: के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और यह विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला। पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
2: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम ए इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
3: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ता गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
4: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव यहां एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रिया

0: का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म टेलीविजन प्रसारण डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol

मनहार की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म आप तो ऐसे ना थे। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत सुनिएगा फिल्म यादों की बारात से।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मरु चैनल है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे चर्चा का विषय कार्यक्रम।
1: चर्चा का विषय है, ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझकर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकेंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं, वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक एसओपी बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हों। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एसओपी कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे, क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
4: जी नमस्कार।
2: शरद जी आपके साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो, आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए, म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसे लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देके उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको पता ही, अब जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना, तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनल, जो कि फ्रॉड करना चाहता है, उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं, वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा, अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
2: जी हाँ बिल्कुल। अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
4: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है एसओपी बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलीजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो है वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। कोहली साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इंप्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेंड कर रहे हैं कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
2: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे, जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं,

0: सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके। शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए? एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई, उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
1: सबसे पहले तो इसमें आनंद ये है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पर डाल देंगे, हम AI से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, तो जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया है 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं, बहुत जल्दी एक्ट करना। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए, तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरी के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो SOP जारी किया है, उस SOP में क्या क्या चीज है, आप देखिए, अगर SOP को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, FIR भी करेंगे, और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, UPI से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है, जी हमें क्या पता, तो आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई, लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास, तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा, देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज, ये भी कहा गया आनंद के, स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाए बकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से कम समय में सर्कुलेट कर दे, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट्स, क्योंकि देखिए होता क्या है, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं, उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगा, इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा। तो ये जो लंबी चेन है, इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है, तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता।

0: तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
1: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
2: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है।

0: कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
1: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड हैं, वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट्स कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है कि जो एक डिले, 1 घंटे के डिले पेमेंट जो है का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप 1 घंटे के बाद वो जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो 1 घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी, वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें बना, 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वो ऑल इंडिया एक लाइन है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से वो हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं। और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट वो अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
0: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
2: देखिए, आपने जो बात कही पहले उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कलेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अंटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए। उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी, किसी आम आदमी को यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिस पे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जब हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं तो FIR करने में डिले होती है, जिसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, और मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है। अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक। तो इसमें स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हो। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजैक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा है। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डीफ्रीज करना भी जरूरी है। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी कि रिकवरी रेट बहुत कम है। मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूं 1 लाख रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है कुल में,

0: उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12-12 हजार, 12.5 हजार, इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है। उसमें से मात्र 5-10 हजार रुपए, 5%, 10% रिकवरी हो पाती है। और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी है हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया, जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें, वहां बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर रहे हैं, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसी अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है। हाँ, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसीज को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है, अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
1: जी हाँ, रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम हैं, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो KYC की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, EKYC भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
2: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डिलीजेंस के साथ सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट्स पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू खोल जाते हैं। BC मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं, और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डिलीजेंस के साथ सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहां होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है, या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए, अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है, और दूसरा, सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी, आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
1: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं,

0: और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के ज़माने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसके मुकाबले जो एआई के इस्तेमाल से अब डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। एआई दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहली तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से एआई की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
1: देखिए, अगर हम एआई की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है। तो एआई के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि एआई में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है, ज्यादातर तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, ये आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलीजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास वो नंबर भी सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया, अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता, उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट्स मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से एआई टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहां पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है, जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को। ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करें, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है, पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या मैं कहता हूं, अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं, यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
0: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आरबीआई को एसओपी बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग्स टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजैक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक

0: करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है। तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें, और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहे कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को टटोलते रहें।
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है। आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है। साइबर ठगी से बचने के लिए, आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
2: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है, तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है। और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए, और आपका पैसा सरकार से सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती। याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे चर्चा का विषय है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं और ये समय है आप लोगों के लिए फिल्म संगीत का। लीजिए, फिल्म संगीत में पहला गीत सुनिएगा। मुकेश की आवाज़ में ये गीत होगा फिल्म मेरा नाम जॉकर से।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा यशुदास की आवाज़ में, और ये गीत आप सुन पाएंगे फिल्म बावरी से।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में अभी आपने गीत सुना फिल्म एक दूजे के लिए। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा, सावन को आने दो, फिल्म से ये गीत है और आप आवाज सुन पाएंगे यशुदास की।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म लव इन टोक्यो से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अगला गीत सुनिएगा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म गोपी से ये गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे गोपाल चंद्र नंदी के वायलिन पर राग मधुवंती और राग बागेश्वरी।

0: अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत गोपाल चंद्र नंदी के वायलिन पर राग बागेश्वरी और मधुवंती। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश हैं।
1: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।

0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते सहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretations issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour for a timely reform. The strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. Earlier in the day, the Upper House witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET paper leak issue. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible